0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: दिलराज नंदा जी चंडीगढ़ से।
2: राधे राधे
1: महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। हम इस जीवन में करने क्या आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे पता चलेगा?
2: अभी तो हालत खराब है, कैसे? अभी उधर से आए लगे एकदम। हम करने क्या आए, क्या करने है? हम प्रेम स्वरूप भगवान के अंश हैं, हमें प्रेम चाहिए। हृदय की बात समझो ये सब। अगर संसार के पद धन सब एक तरफ रखा जाए, हृदय से देखो अगर कोई प्यार करने वाला ना हो तो हृदय में लगता है कि जीवन अधूरा है, नहीं लगता? हम एक ऐसा साथी चाहते हैं जो सदैव हमारे पास हो और हमारे मन की करे, हमारे मन की जाने, तो हमें बहुत प्यार करे। वो केवल प्रभु है, क्योंकि अगर यहां किसी से प्यार करे तो वो अपने मन की करवाना चाहता है सामने, जिससे हम भी प्यार करें। नहीं, हमारे मन की कोई करे वो तो पूर्ण काम होगा, वही कर सकता है जो पूर्ण है। अपूर्ण तो हमसे चाहेगा, वो हमें प्यार क्या करेगा? वो हमसे अपने सुख की चाह रखेगा तो हमसे प्यार क्या करेगा? हमारे हृदय में एक मांग है कि प्रेम की, वो हम जान नहीं पाते। हम जो धन चाहते हैं उससे शरीर से प्रेम करते हैं, इसलिए धन चाहते हैं। हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा

उसका पुत्र हूं जो इस घर में पोछा लगाती काम करके, भला राजकुमारी मुझसे क्या प्यार करेगी, पर अब मैंने ऐसा रूप नहीं देखा, अब मैं जी नहीं सकता। घर वापस हुआ, खाना पीना बंद कर दिया, कई दिन जब भोजन नहीं, उदासी, तो उसकी माँ ने पूछा तुम क्या चाहते हो, कौन सी ऐसी बात है, अगर कोई पीड़ा है तो मैं राज महल में सेवा करती इसलिए राज वैद्यों को बुला सकती हूँ, महाराज मेरी प्रार्थना सुनेंगे क्योंकि मैं उनकी सेविका हूं, क्या चाहिए तुझे, क्यों ऐसा करता है। तो उनका तुम माँ हो इसलिए बता रहा हूं, पर तुम भी नहीं दे सकती, मैं जब आप काम को जा रही थी तो मैं महल गया, राजकुमारी को देखा, मेरा मन आसक्त हो गया, अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता और उसको किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं मरूंगा, मैं उसके बिना नहीं। एक दृष्टि मन चाहा सौंदर्य देखा तो प्राण निछार कर दिए, सारे भोग फीके लगने लगे और शरीर का भी प्यार छूटने लगा, मैं शरीर छोड़ूं, देखना प्रेम की महिमा देखो। और उसकी हिम्मत कैसे पड़े मां की, पर पुत्र से बढ़कर कोई नहीं है, उसने अपनी जान की भी परवाह न करके राजकुमारी से मिलने का समय लिया और गई और कहा कि मैं आपकी चरण सेविका हूं, आपके महल का पोछा लगाती हूँ, साफ करती हूँ, जो कहने जा रही हूँ मृत्यु दंड देने लायक बात है, पर यदि आप क्षमा करें तो मेरी हिम्मत बने। तो नहीं नहीं आप बोलिए क्या बात, तो उनका बता रही हूं कि मृत्यु दंड ले आप दे सकती हैं मुझे, मेरा पुत्र आपके रूप यौवन पर आशक्त हो गया है और जिस दिन से देखा उस दिन से भोजन नहीं पाया, कह रहा मैं प्राण त्याग दूं, बस मैं आपसे भीख मांगती हूं कि मेरे पुत्र को, मेरी सामर्थ्य ये कहने की नहीं है कि आप मेरे पुत्र का वरण कर लें, पर मेरी सामर्थ्य कि आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए। उनका ठीक है आप भेजो पुत्र को, वो बहुत विवेकवान थे पुत्र है, तो उनका तुम मेरे इस रूप पे आ सकते हो, उनका जी। तीन दिन बाद आना, अगर ये रूप आपको पसंद आएगा तो मैं ये शरीर आपको दे दूंगी, जाओ खाओ पियो मौज से रहो, तीन दिन बाद आना। उसने राजवैद्य से अधिक शौच होने वाला पदार्थ ले लिया, जो पानी ही पानी पानी ही पानी, तीन दिन लगातार 200-500 शौच, और उसको स्वर्ण के पात्र में रखवाया। तीन दिन बराबर शौच होने के कारण चेहरे की आकृति बदल गई, शरीर सा बुला उसको, अब मल के ढक्कन खुला रखो, पूरे कमरे में बदबू, घृणित बदबू, उसमें बुलाया गया, जाओ राजकुमारी बुला लो। पहले तो इतनी बदबू, तीन दिन का मल वो खुले पात्र में रखा, वैसे किया, जब राजकुमारी के समीप गया तो बराबर शौच होने के कारण आकृति शरीर का वो तेज वो सब, तो उसने कहा कि वो तेज कहाँ गया, बोले उस घड़े में भरा है, उल्टी जैसा लगा, भगाओ। राजकुमारी इनका इसी शरीर से प्यार करते हैं, भाग क्यों रहे हो, यही तो चमक रहा था, ये मल मूत्र ही था जो चमक रहा था, शरीर का ढांचा तो वही है, कहां जा रहा है, नहीं हमें बात नहीं करनी, राग खत्म हो। सही पूछो, हमें एक ऐसा प्यार चाहिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब प्यार के लिए कर रहे हैं, अच्छे से समझ लो, बस प्रेम चाहिए, और वो जगत में कहीं मिल नहीं सकता। एक धनुदास नाम के महान संत हुए हैं, उनका जब ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बहुत ही अनुकूल और सुंदर थी, इतने आसक्त हो गए वो कि एक क्षण भी उसके बिन, ये कुछ जो महापुरुषों की लीलाएं होती हैं उनकी सारी इंद्रियां एकाग्र होती हैं, जिधर लगती है ना भरपूर लगती है, पूरे आसक्त हो गए। अब सामान बाजार से लाना तो वो जा नहीं सकते, पत्नी के साथ चलेंगे, पत्नी ऐसे चल रही हो आप बैक उल्टा चल रहे हो, छाता लगाए धूप ना लग जाए, क्योंकि मैं इस रूप को प्यार करता हूं, और एक एक कदम पीछे। ये आचार्य चरणों के शिष्यों ने देखा तो सब हंस रहे थे, लेकिन वो एकाग्रता पूर्वक, वाह यार अपनी इंद्रियों को इतना एकाग्र कर दिया इस पे, किसी तरफ नहीं देख रहा, कोई उपहास की बात, पत्नी को ऐसे देखते बैग चले तो उपहास हो रहा था। आचार्य ने कहे तो बहुत काम का आदमी है, इसने अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लिया, मोड़ना है मैं इसके दर्शन करूंगा। आचार्य चरण गए नजदीक, कहा ए भाई मेरी तरफ तो देख ले, उधर ही देखता रहेगा, बोले जी नहीं सकता इसके देखे बिना, आसक्ति होती। तो उनका क्यों इतना आसक्त क्यों हो, बोले ऐसा रूप है।

0: ऐसा गुण है, ऐसा प्यार है कि मैं नहीं अलग हो सकता। बोले अगर इससे बढ़ के तो बोले हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेमी जिससे प्यार करता है उसकी नजर में उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। ऐसे प्यार में जैसे चपत नहीं लगाते थे, कहता है हो ही नहीं, जे ही स्पर्श किया और संकल्प किया ते सामने ठाकुर ललित त्रिभंगी मदन मोहन, जे ही रूप वो दर्शन छाता छूट गया, पत्नी विस्मृत हो गई और वो महान संत से धनुर्दास जी नाम के हुए, दोबारा देखा भी नहीं पत्नी को, क्योंकि असली रूप का दर्शन और असली प्रेम का दर्शन हुआ, सब छूट गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिस दिन से ब्याह होके आया, एक क्षण के लिए भी मायके नहीं जाने दिया। कामी पुरुष अलग होता है, प्रेमी पुरुष है। कामी पुरुष कहीं भी हो अपनी काम वासना की, प्रेमी जी नहीं सकता जिससे प्यार करता है। अब जब उनके भाई आते तो बहाने से लौटाल देती, बता नहीं पाती थी कि हमारे प्रिय पति इतना आसक्त है कि मैं। एक दिन वो किसी उपरोहिती कर से किसी जजमान के यहां गए थे, बस कुछ क्षण के लिए, लौट के आए तो भाई के साथ महादी के दर्शन करने चले, जो ही सुना तो वैसे ही लौट पड़े। संध्या काल हो गया था, नदी पार की बड़ी कहानी है, छत से जाके आंगन में कूदे तो निकल के आई, देखा उसका धिक्कार तुम्हारी आसक्ति को, जितना इस चाम पे आसक्ति करते उतना राम पे करते, महान हो जाते। बस कदम पीछे हटाया और कहा आज से मैं तुम्हें गुरु मानता, दोबारा देखा नहीं। राम राम राम, इतने बड़े महान संत बने। चिंतामणि पर अत्यंत आसक्त बिल्व मंगलाचार्य, जिनको कहा गया बिल्व मंगल जी अपनी आंखें फोड़ ली थी सुई से, उनके पिता ने उनका ब्याह किया, बहुत सुंदर लड़की, शायद इसकी आसक्ति पे फर्क पड़े, और वो लड़की पतिव्रता थी, एक बार भी उन्होंने बात भी नहीं की, और उसकी सारी जेवर लेकर चिंतामणि को सब संपत्ति, इसी शोक में माता पिता मर गए। चिंतामणि तो वैश्या धन नहीं, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आज ही अपनी पत्नी के पास गए, रो के कहा मुझे बचा लो, अगर मुझे धन नहीं मिलेगा तो वो मेरी तरफ देखेगी नहीं, अगर देखेगी नहीं तो मैं जीऊंगा नहीं। आज अपनी पत्नी से देख, पत्नी ने कहा हमारे पास तो एक सुहाग का वो होता है माला, क्या कहते हैं उसको, मंगल सूत्र, वही आप ले लो, कम से कम आपको देख लेगी, आपको सुख मिल जाएगा। कहानी पूरी बड़ी है। उसने कहा कहां से लाए, उसने कहा अपनी पत्नी से, फिर क्या लाओगे, फिर कुछ नहीं, मतलब निर्मम, जब तू अपनी पत्नी का ब्याह ही हुई का उसका नहीं हुआ जो इतना प्यार करती है कि तेरे लिए मंगल सूत्र, तू मेरा क्या, उनके पास आदमी तो धक्का मार के निकाल दिया। अब कोई रास्ता नहीं, जिसका कोई रास्ता नहीं होता उसे भगवान के भक्त मिल जाते, संतजन, उनको भगवान का परिचय मिला कृष्णचंद्र जी का। तो जैसे जलते हुए आग में किसी को गंगा की धारा मिल जाए, नाम जब भगवत चिंतन शांति मिली, वो जो वियोग चिंतामणि का था, वो आसक्ति जो थी उसका मोड़ हुआ प्रभु की तरफ। एक ही वर्ष हुए थे, मन में आया कि मैं विचरण करूं, एक आश्रम में न रहूं। तो वो विचरण कर रहे थे, आगे जा रहे थे तो गांव बाहर मंदिर था, सरोवर था, तो वहां देवी पूजन के लिए माताएं बहने आती, तो एक नौवधू जा रही थी पूजने, बिल्कुल हूबहू चिंतामणि जैसी, और फिर वो आसक्ति जागृत हो गई। बहुत मन को समझाया, बस वो पीछे लग गए, वो पूजन की वापस होकर के गई, जब घर में गई तो ये दरवाजे तक गए। उसका पति बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व वाला स्वभाव का था, अपने पति से कहा कोई नीच आदमी है, चिन्ह तो वैष्णव धारण किए पर गलत दृष्टि से हमें देख रहा, पीछे लगा चला रहा है, तो दरवाजे पे आया है, हम हैं, धैर्य रखो। नजदीक गए, कैसे आगमन हुआ आपका, थप्पड़ भी मार सकता था। तो उन कहा आप कौन है, बोले जो अंदर गई उनके हम पति हैं, बोले मुझे बचा लो, मैं आसक्त चित्त हूं, मैं एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं, वो मेरी चिंतामणि जैसी ही है। उनका ठीक है, आप हमारे अतिथि हुए हैं, हम आपकी सेवा। पत्नी से कहा, उसने कहा प्रभु कुछ गलत, बोले हम है ना चिंता, बैठो आराम से, उसे उसकी भावना है ना दर्शन का। आराम से दस, हिम्मत उसकी आई, पत्नी गई, फिर उनको जलन हुई, अरे नेत्र तूने मार दिया मुझे, वहां से ठोकर खाया था, प्रभु की शरण में गया, अब प्रभु से फिर तूने हटा दिया, ये अभी दिखाई देगी फिर छुप जाएगी, फिर क्या करूंगा। उनका मेरी एक बात मानो, दो सुइयां हमें दे सकते हो, हाँ बस अभी लाके तो घर है। और कहा आए नेत्रो, संसार से ठुकराया हुआ भगवान की शरण में गया और तूने फिर मुझे भगवान से विमुख कर दिया सच्चे प्यार से, अब तुझे रखूंगा नहीं। जय श्री कृष्ण, दोनों नेत्र फोड़ लिए। अब जो जन्म से अंधे होते उनका अभ्यास होता है चलने का, और ये तो अभी अभी आंख फोड़ी है, घर में चीख मच गई, कहा नहीं किसी का अपराध नहीं, ये मैं अपने नेत्रों का अपराध मानता हूं, चल पड़े। लोगों से पूछा किधर वृंदावन है, मुझे वृंदावन का रास्ता बता दीजिए। अब पूर्वाभ्यास है नहीं, तो एक अंधा कुआं था रास्ते में, उसमें गिर गए, जे गिर गए, कृष्ण की सेवा कौन, हा कृष्ण, तो आवाज आई बाबा हाथ दो, सोचा इतना बड़ा हाथ किसका हो सकता है, वो तो अजान बाबू भगवान के ऊपर एक सेकंड में, इतना सुकुमल, इतना सौरभ, इतना भगवान छुड़ाए, समझ गए। तो उनका बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहू तो है। वो महान आचार्य बने बिल्व मंगलाचार्य, श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति। हमारा मन प्रेम चाहता है सच्ची माने, पर वो जगह जगह धोखे खाकर फिर भी संसार में ही उसकी पूर्ति करना चाहता है, ये गलत बात हो गई। प्रेम बपु, प्रभु से यदि हमारा प्रेम हो जाए, प्रभु भाव से प्रेम हो जाए, तो सर्व मंगल हो जाए। हमारा लक्ष्य है हमारा कोई एक ऐसा हो जो अविनाशी हो और मुझे बहुत प्यार करता हो और कभी मुझे दुख ना मिले, वो केवल मेरे प्रभु ही है, दूसरा नहीं। इसीलिए शास्त्रीय भाषा में कहा गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संहारा। संस्कृत में कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो देहे नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जीवन भगवान और भगवान के प्रेम करने वाले महाभागवतों के दर्शन के लिए मिला है। हमारा जीवन धर्मयुक्त हो और भगवत प्राप्ति हो, अर्थात मैं भगवत प्रेमी बन जाऊं। रसखान जी बालकों से बहुत प्रेम करते थे, उनका अलग अलग रुचि होती है, गलत भावना से नहीं, स्वभाव होता है, एक रुचि होती है, एक आस, किसी को पक्षियों से प्यार होता है, किसी को पशुओं से प्यार होता है। जब संत जन उन्हें मिले तो उन्होंने कहा, अगर बालक ही देखना चाहते हो तो ब्रज में आओ ना, नंद का छोरा है, उसको एक बार देख लो, देखना मिट जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना कि कोई भगवान की बात कर रहे हैं, तो वो प्यार करते थे बालकों से वो। और ठाकुर जी भी बड़े लीला बिहारी, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, और वो इस लक्ष्य से क्या है कि नंद के छोरा को देखेंगे, तो देखा करधनी बांधे हुए छोटा सा ऐसे पीतांबर और ऊपर झगुलिया पहने हुए और बंसी, और लुट गए। तब यो कहते मत जाना मत जाना, ब्रज की गलियों में मत जाना, एक ऐसा चोर खड़ा है जो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा, कहीं का नहीं रखेगा। अर्थात असली जब प्यार मिला रसकान जी को, बिक गए भगवान पर और कृतकृत हो गए। केवट को जब भगवान के चरण पखारने को मिले, गैराब कछुनाथ न चाहिए, हमें ये प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। सही सोचो सही ढंग से, अभी आनंद से बैठ के तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो सुख के लिए ना, देख लो आप, जो भी सुख के लिए ना। क्या जो तुम सोच रहे हो वो किसी के पास नहीं है क्या, होगा क्या, वो सुखी है, वो कुछ और चाह कर रहा है। अर्थात अभी सुख का ठिकाना किसी को नहीं मिला, सुख का ठिकाना है सुख सिंधु भगवान। और जहां भगवान से वास्तविक अपनापन हुआ तो फिर कुछ नहीं चाहिए, जा ही न चाहे कबहू कछु, तुम संत प्रेमी को कुछ नहीं चाहिए। वो लैला मजनू की प्रेम की बात सुनी होगी, बहुत व्याकुल होकर के मजनू पुकार रहा था लैला लैला, तो अहेतु की कृपाल भगवान है, वो आए, उन्होंने कहा तेरी विकलता देखकर मुझे चैन ले, तू मेरा दर्शन कर, कौन हो तुम। तो उनकी भाषा, वो बोलते हैं जो अपने भगवान का नाम, वो नाम लिया मैं वो हूं, तो उनका नहीं, मुझे तेरे दर्शन नहीं। अगर तू सामर्थ्यशाली है तू लैला का रूप रख के आता, मैं तुझे देखूंगा। ये नेत्र उसके सिवा किसी को नहीं देख सकते। प्रेम देखो ना, शरीर की परवाह नहीं, प्राणों की परवाह नहीं, किसी के कोई पर, ये एक प्रेम पूरा बड़ी सूक्ष्मता से देखो। प्रेम ही परम विश्राम है। हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं इसलिए शरीर को भूल से बहुत अपनी आत्मा मान बैठे, तो सारा प्रेम इसी से है। अगर शरीर पे आ जाए, तुम्हारा बहुत प्राण प्रिय दोस्त है और तुम्हें पता चल जाए कि ये हमें नष्ट कर देगा, तो पहले आप नष्ट कर दोगे, क्योंकि देह प्राण से प्रिय कछु नहीं है। और जब आपको ये पता चल जाए कि आत्मा की प्रियता के सामने ये देह कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग जब वो आत्मा अंतरहित हो जाती है तो देह को जला देते हैं। अगर ये ज्ञान वास्तविक टिक जाए, जो अंतिम समय सब कहते हैं राम नाम सत्य है, ये सत्य नहीं है जिसको ले जा रहे हैं, देख लो क्या है, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। सत्य क्या है? बोले नाम सत्य है। बोले बैठा ले दिमाग में, नहीं वो केवल गीत गा रहे हैं, केवल वहां तक जा ले, इसके बाद उसको दिमाग में ले बैठा लेंगे। तो आपने जो प्रश्न किया वो सत्य विषय यही है कि हम भगवान के अंश हैं और हमें प्रभु से प्यार करना है। अगर उनसे प्यार नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। वही जब तक सबके अंदर है तो हम किसी से भी प्यार करते हैं तो होती उन्हीं की आकर्षण वृत्ति पर हम जान नहीं पाते और नाम अलग दे देते हैं, रूप अलग देते हैं, ये मेरी प्रिय पत्नी है, मेरा प्रिय पुत्र है, पर होता वही है। और जब वो अंतर ध्यान हो जाए तो रख लो भला प्रिय पुत्र और प्रिय पत्नी को, अर्थात सबका प्यार का केंद्र भगवान है। और इस जन्म में मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, ये ही बड़ी बात है, ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही होता है।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज। डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राज गुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशल क्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

स्थित पावनी गंगा का सुहावना तट, अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषाद राज गोह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषाद राज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं।

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें ये कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाएं। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बनाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांत

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shimaru Filmi Gaane.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
4: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिन्दुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रूपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने

0: उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपके

0: मेरा पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।

0: ही परहेज करे नहीं। वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एस पी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एस पी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971660002।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे शामिल। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज हो सकती है घोषणा। प्रदेश के 5 कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया।

0: जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान में एनडीए गठबंधन 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो देश के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज किए जाने की संभावना है। इन चुनावों के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। किसी भी उम्मीदवार के नाम वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में विजय उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार होने के कारण सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। भाजपा ने इस चुनाव के लिए पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन की ओर से 1 सीट पर राजद के सुनील सिंह उम्मीदवार हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग आज से 17 जून तक राज्य के सभी अंचलों में लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाए गए महाअभियान के दौरान आवेदन लिए गए थे, हालांकि तकनीकी कारणों से इन आवेदन का निपटारा नहीं किया जा सका था। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। पटना उच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार इनमें 3 स्थायी और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। पटना उच्च न्यायालय की ओर से कॉलेजियम के तहत 11 अधिवक्ताओं के नाम भेजे गए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 7 नामों की अनुशंसा की है। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। प्रदेश के 5 कलाकारों को अकादमी के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ अभिनेता सुरेश कुमार हज्जू, नाट्य निदेशक शिव नारायण झा और लोक कलाकार महेंद्र राम को राष्ट्रीय कला पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके साथ ही युवा रंगकर्मी रोहित चंद्रा और लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव को युवा पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मोबाइल हूटर के माध्यम से अगले 3 घंटों में पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में तेज आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि इन स्थानों पर आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के शेष स्थानों पर भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ा गांच में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नेपाल ने भारत से आम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि ये रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि नेपाल ने हाल ही में गर्म पानी से उपचार की आवश्यकता सहित कुछ आयात शर्तों में संशोधन किया है, भारत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन में निर्यात को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। इस बीच नेपाल सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि भारतीय आमों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। श्री पाल ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 8,000 स्थानों पर अतिक्रमण की पहचान की गई है जिन्हें जल्द ही हटा लिया जाएगा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित फर्जीवाड़ा और जालसाजी मामले में मुंगेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 15 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना और मुंगेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये गिरफ्तारियां की गईं। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पटना में दर्ज 2 मामलों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए यह कार्रवाई की गई है। रोहतास जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सासाराम स्थित हजरत बिजली शहीद की दरगाह पर चादर पोशी की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एस जमशेद अहमद ने किया। किशनगंज मंडल कारा में सजायाफ्ता एक महिला कैदी उषा रानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में वो फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थी। जेल अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि महिला बंदी पिछले कुछ समय से मानसिक अवसाद से पीड़ित थी। अररिया जिले में भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के बीच सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने और आपसी सहयोग को लेकर एसएसबी और नेपाल सुरक्षा बलों के बीच सामंजस्य बैठक आयोजित की गई। बॉर्डर एरिया मीटिंग में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने पर सहमति बनी है। पटना जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इधर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन और मोबाइल चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। इससे पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थीं। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, मध्यम वर्ग के लिए हर क्षेत्र में नए मौके। दैनिक जागरण ने राज्य में हुए टेंडर घोटाला मामले पर शीर्षक दिया है, ऋषुश्री के करीबी 3 अफसर गिरफ्तार, संजीव हंस फरार। दैनिक भास्कर की खास खबर है, बिहार में विकास की रफ्तार सुस्त पड़ी, सरकार ने पुल सड़क पर खर्च 38% घटाया, चुनावी साल में सब्सिडी पर 64% अधिक लुटाया।
प्रभात खबर ने फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, फुटबॉल का महाकुंभ, एक बॉल पर नाचेगी दुनिया। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार सरकार की बैंकों को चेतावनी, सुधार न करने वाले बैंकों के सरकारी डिपॉजिट पर लगेगी रोक। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य के 94,29,000 पेंशनधारियों के खाते में पहुंचे 1,096 करोड़ रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे शामिल। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज हो सकती है घोषणा। प्रदेश के 5 कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के दौरान पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 से 7 तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
10: Now pick it up, hello, now pick your phone up, hello, pick it up, hello, now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हां, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
2: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून।
2: हम गोल्डन ट्रस्ट इंडिया से बोल रहे हैं
1: जी। क्या हाल है आपका?
2: बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा है अभी?
2: बस काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, सब बढ़िया है। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है।
1: मौसम तो बहुत गर्म है, धूप बहुत ज्यादा तेज निकल रहा है।
2: धूप बहुत ज्यादा है और हवा भी नहीं चल रहा है ना, तो बहुत गर्म है। हमको एक गाना सुनना था।
1: बताइए कौन सा सॉन्ग?
2: नमक लाल फिल्म का वो गाना पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, ये गाना बजा दीजिएगा। और ये गाना मैं जितने रेडियो रंजन सुनने वाले होता है सबको सुनवाना चाहता हूँ, जो मेरे दुकान पे काम करते हैं और सबको सुनवाना चाहता हूँ।
1: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी योगेश जंगले भी मैं तरह छत्तीसगढ़।
1: क्या हाल है आपका?
0: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: तबीयत ठीक है?
0: एकदम बढ़िया है।
1: बढ़िया। और मौसम बताइए, उधर का आज मौसम कैसा है?
0: मौसम धूप है, गर्मी है, अभी बारिश का इंतजार है।
1: बारिश तो पता नहीं कब होगा।
0: जी
1: तो और सब कब ठीक है ना?
0: और बाकी सब ठीक है।
1: जी चलिए बताइए, क्या फरमाइश है आप?
0: फिल्म है सच्चा झूठा गीत के बोल है, यूं ही आती हो तुम ख्याल।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: कुछ मित्र है, शीतल गोयल जी, लोकेन वर्मा जी, दिलीप पहुजा जी, रोशन दिवंगल।
1: ओके चलिए, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे।
0: धन्यवाद।
1: रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
13: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
12: तो देर मत कीजिए,
13: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
14: Now pick it up, pick it up. Hello? Now pick your phone up. pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
16: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आप के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
18: थैंक यू और आपको नमस्कार।
17: नमस्कार,
18: अनिल बात कर रहा हूँ जोधपुर से।
17: हाँ जी अनिल जी, क्या हाल है आपका?
18: बस बढ़िया है, अपना बताइए।
17: मेरा भी बढ़िया है।
18: तब मौसम कैसा है?
17: इधर का मौसम अभी बहुत गर्म है।
18: हाँ, इधर भी वही हाल है।
17: तो आपकी तबीयत कैसी है?
18: तबीयत ठीक है, अच्छा है, और थोड़ा सा सावधानी से तो रहना ही पड़ेगा इस धूप में।
17: तो सब घर परिवार में बढ़िया है?
18: सभी लोग ठीक हैं।
17: चलिए अच्छी बात है
18: जी।
17: खाना हो गया आपका?
18: हाँ, खाना वाना खा के आए हुए हैं काम पे।
17: बताइए आज कौन सी फरमाइश है आपकी?
18: आज सोच रहे हैं भोजपुरी गाना सुनने का, क्योंकि काफी दिन से सिर्फ हिंदी गाने ही फरमाइश किए हुए हैं।
17: तो बता दीजिए कौन सा भोजपुरी सॉन्ग सुनेंगे?
18: एक गीत है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मूवी से, भोजपुरी मूवी है, उसी का गाना है। मुस्की मार के जे बोले ला करे जो, ये वाला।
17: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
18: सभी लोगों को और जितने लोग सुन रहे हैं बाकी।
17: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
18: थैंक यू मैम।

0: मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द है निगाह जमाने की, खुद को बना इस कदर काबिल, खुद को बना इस कदर काबिल, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: मैं कमरान रशीद भिले चौकड़ी मुकाम
1: जी, क्या हाल है आपका?
0: मेरा हाल ठीक है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है,
0: बढ़िया है।
1: बढ़िया है, तो क्या हो रहा है अभी?
0: कुछ नहीं, बस आपको कॉल लगा रहा था। मैं बोला कॉल लगाऊं, आज तो मंडे है, हेलो माय चॉइस का रिकॉर्डिंग होगा
1: जी।
0: देखिए लगाया तो लग भी गया, और नाश्ता उस्ता हुआ?
1: मेरा हो गया, आपका हो गया?
0: हाँ मेरा तो हो गया है नाश्ता, तो मुझे भी 1 बजे खाना होगा। गर्मी तो इतना गिर रहा है, क्या बोला जाए गर्मी को।
1: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है।
0: हाँ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो मुझे इस गर्मी में नींबू पानी ज्यादा लिया करे, और इस गर्मी में अगर कोई काम ना हो तो बाहर जाना ही बेकार है।
1: ये तो बात,
0: बहुत गर्मी है, और अभी हरा सब्जी खाए, तेल मसाला कम डाले, ये सब अच्छा रहे, ज्यादा खीरा हुआ, तरबूज हुआ, ये सब मैंने ठंडा चीज। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज बताना कोई बुराई थोड़ी है,
1: नहीं
0: बताना ही चाहिए जरूरी, और हर पर ठीक है। वो आज सुना रही,
1: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है?
0: वो सॉन्ग सुनना है मूवी है कहो प्यार, उसने का गाना है प्यार के कश्ती में लहरों के मसले।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सबसे पहले आपको, आयशा, शबनम सिद्दीकी, सबीना, हेना, हाजरा, तरी, जहां, रानी हरकुआ, निशा भारती, निशा सुकुलवा, और अहमद अली, और दिलीप राम, समीर आलम, इरफानी, सजीर आलम अंसारी, आजाद अंसारी, सऊदी, गुलाम हुसैन, और जितने लोग सुन रहे हैं, हाँ भास्कर भाई, बरजू भाई, उत्तम सोनी, दिलेंदर भाई, मुकेश भाई, उमा शंकर भाई, तो सभी को साथ सुना दीजिए हम गाना।
1: जी जी बिल्कुल,
0: अच्छा लगा आपसे बात करके हमें, अब बहुत अच्छा है, मैं चॉइस कर रही हूँ, आपको अच्छा आइडिया हो गया है, और रोनी जी भी तो करती है,
1: वो तो करती है।
0: हाँ, और आप भी अच्छा कर रही, अच्छा करिए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं और कामयाबी हो आपको, और आप बेहतर से बेहतर करें। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
12: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
16: Hello.
14: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: जी नमस्ते।
16: नमस्ते,
15: हम पचपरा से बोलते हैं।
16: जी क्या हाल है?
15: ठीक तो है, अपना बताइए।
16: मेरा भी ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी?
15: अभी तो खाना वाना खा के आराम कर रहे हैं, साथ ही फोन लगा रहे हैं।
16: चलिए तब तो बढ़िया है। उधर धूप है कि नहीं?
15: जी
16: उधर मौसम कैसा है?
15: बहुत धूप निकला है, गर्मी बहुत है।
16: जी गर्मी तो है, इधर भी गर्मी बहुत है।
15: गर्मी से काम है की भरोगा तो ठंडा ठंडा हुआ
16: रहता है।
15: गाना सुना दी खेसारी लाल का कोको कोला।
16: किसी को सुनाना भी है सॉन्ग?
15: सुनाए बाबू खाने का रवाजी पसंद कहे थे मुझे की उनको बोर बड़ा जोड़ा था ऐसे उनका तो पिया दिया जरूरी था कोको कोला जी बोरवा जोड़ल बोल हो जाओ। सुना तो भाई सुन ले जो कोको कोला क्यों भेजा था पिए के।
16: जरूर सुनाएंगे
15: जी।
16: और सब बढ़िया है ना आपका?
15: हाँ हाँ सब बढ़िया है। पछवाड़ा से बोला ही बोलता नहीं
16: बता है
15: जी। अब ऐसे कहे नमो बता लिया जरूर भाई पछवाड़ा नाम धरत तरबा समझ जा।
16: हाँ
15: हाँ कब आप सब अच्छा?
16: हाँ हमारा ठीक बा, अपन बताएं।
15: सब बढ़िया बा, चलिए ठीक बा। नमस्कार
16: नमस्कार, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
15: जी। नमस्कार,
16: नमस्कार।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: गाना सुना है?
1: गाना सुनाएंगे, एक बार नाम बता दें।
0: रामखेत
1: जी। कहाँ से?
0: गोपालगंज से।
1: अच्छा, क्या हाल है आपका?
0: ठीक है।
1: बताइए, क्या फरमाइश है आपकी?
0: गाना सुनना है।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: चिट्ठी आई है, चिट्ठी नहीं आई है, वही गाना।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: जितना आदमी सुन रहा है सब लोग करे।
1: चलिए, और सब बढ़िया है ना?
0: हाँ, सब बढ़िया है।
1: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: नमस्कार।
6: नमस्कार,
5: बढ़िया, अच्छा बताइए।
6: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
5: ठीक है, मौसम का हाल बताइए क्या है?
6: मौसम इधर बहुत गर्म है।
5: गर्मी तो इधर भी है बहुत। गाना सुनना है, सुना दीजिए।
6: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है?
5: धनंजय शर्मा का गाना है, एक नवजिया बैठ क्या जाने, ये दिल की बीमारी है।
6: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
5: सबसे पहले आपको और रेडियो रंजन सुनने वाला है।
6: चलिए फिर गाना करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्रेम फोर एफएम में।
1: गाना हमने सुना है
0: जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दे एक बार अपना।
1: किशोर कुमार
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: महाराष्ट्र।
0: अच्छा, तो बताइए क्या हाल है आपका?
1: इधर हवा चल रही है, आवाज नहीं रुक रुक के आ रहा है।
0: अच्छा, मौसम उधर का कैसा हुआ है?
1: अभी इधर का मौसम ठीक है, नहीं है हवा बढ़ रहा है इधर, बिहार से अच्छा चल रहा है।
0: बताइए फरमाई से आपकी।
1: शराबी वाला गाना सुना दीजिए, अंतर संख्या लोग कहते हैं हम मैं शराब।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: कुमार, रितेश कुमार, अभिषेक कुमार, उनको सुनवाना है।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल।
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जात, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
12: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
13: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
11: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
10: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
11: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
10: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
11: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
10: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
11: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
10: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611।
13: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
10: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम में।
16: सलाम वालेकुम।
17: वालेकुम अस्सलाम
16: जी, मुझे गाना सुनना है मैम।
17: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है?
16: मुझे गाना सुनना है अब लौट के बेटा चल।
17: और ये सॉन्ग किसको सुनाना चाहते हैं?
16: सबसे पहले आपको मासूम कौशर जी ने, कमरान भाई, इरफान भाई, नौसाद भाई, दीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, रुबीना जी भी, सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
17: ओके, तो और सब कैसा है?
16: बढ़िया है, आप कैसी हैं?
17: मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं अभी?
16: अभी मैम काम कर रहे हैं।
17: अच्छा, चलिए फिर बढ़िया है।
16: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ।
17: पता है
16: जी,
17: गुलाम करते हो, सुनते रहे रेडियो 90.4 FM।
16: थैंक यू मैम,
17: वेलकम।

0: एक बार अपना नाम बता दें।
1: स्मृति शर्मा बोल रही हूँ वृंदावन से।
0: अच्छा, क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, गर्मी से तो हाल एकदम खराबी चल रहा है अभी।
0: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही पड़ रहा है।
1: तो सब बताइए, मैम आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? खाना हो गया आपका?
1: हाँ, खाना तो सुबह ही में कर गया, गर्मी से तो पानी से पेट भर जा रहा है, खाना तो खाने का मन ही नहीं कर रहा।
0: तो गर्मी में बच के रहिए, पानी पीते रहिए।
1: आप भी मैम थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: सॉन्ग सुनना था।
0: कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: ये सॉन्ग नहीं है, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, यही वाला सॉन्ग मैं सुना दीजिएगा। और डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी मम्मी को, आपको, और मेरी सिस्टर है नैना शर्मा, सलोनी शर्मा, और जितने भी रेडियो रिंगम के लिसनर है सबको।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रिंगम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम सॉन्ग सुनाने के लिए।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
14: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
15: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
14: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
16: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
17: Pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.
19: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
4: अच्छा, भारतीय जी?
7: जी
4: नमस्कार।
7: नमस्कार, क्या हाल है आपका?
4: ठीक है, और अपना सुनाइए।
7: मेरा भी बढ़िया है।
4: तो आपका आवाज ही सुनकर
7: ठीक
4: है। बीच में कहाँ गए हैं जी? बीच में आप कहाँ घूम रहे थे?
7: यही पे थे, हम भी सोनी जी भी रिकॉर्ड करते हैं, कभी कभी हम करते हैं।
4: नहीं
7: है, दोनों जन रिकॉर्ड करते हैं, कभी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कभी वो कर
18: चुके हैं।
20: सब ठीक है, खाना पीना हो गया?
18: जी खाना पीना हो गया। आपका हो गया?
20: ये हम भी खाकर बगीचे में पीए हैं, फिर मिला रहे थे तो दीदी को भी बता रहा, फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लगेगा तो जरूर
18: लगेगा फिर नहीं।
20: चलिए अच्छी बात है, आप लोग कम ना आ रहे हैं, हम लोग के तरफ से आप लोग पूरा टीम की है।

0: तबीयत ठीक है ना आपकी?
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गुड नहीं है।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: गाना ना दीजिएगा, कल आया था एक बार, इसी हम सुने, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आ जा रहे हो माजो तेरा राधा देख लिया ना, फिल्म का है हमारे और उसमें हीरोइन कौन थी याद नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया गाना है सुरेश भास्कर का, याद नहीं आ रहा था।
0: कौन किसी को डेडिकेटेड है?
1: हमारे सचिन बाबू, हमारे जितने भी लोग के लगे हैं सारे, ठीक है फिर आप आते रहिए,
0: फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: पहचान लिए थे ना हमको?
0: जी
1: कौन बोल रहे थे?
0: लाल बहादुर। ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते।
1: अब मौसम कैसा है बिहार का?
0: बिहार का मौसम तो अभी बहुत गर्म है।
1: क्या अभी गर्मी पड़ रही है? अभी जून का महीना चल रहा है तो
0: जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अभी ये लास्ट गर्मी पड़ रही है
1: जी। घर पर ही है मैडम जी अभी तो।
0: आप कहाँ पे हैं?
1: कवासा से बोल रहे हैं, जिला गुना।
0: अच्छा, वैसे नाम क्या है आपका?
1: गोपाल।
0: अच्छा जी, तो और कैसा है?
1: बढ़िया है, अभी मैडम जी घर पर ही हैं सभी।
0: उधर का मौसम कैसा है?
1: मौसम और बदल भी हो रहे हैं अभी तो, ऐसा ही हो रहा है, धूप भी निकल रही है।
0: अच्छा, भोजन हो गया आपका?
1: हो गया भोजन तो।
0: चलिए बढ़िया है।
1: गाना सुनना है
0: जी?
1: गाना सुनना है।
0: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का सुनना है, कुमार सानू लता मंगेशकर की आवाज में। जी
0: कौन सा सॉन्ग?
1: वो है ना, तुझे देखा तुझे जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम जी वाला।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: डेडिकेटेड है ना, मांगी लाल धाकड़ जी हैं, मांगी लाल चंदेल जी हैं, सुनील साहू जी हैं, मकसूद अनगढ़, इन्हीं के लिए है।
0: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करे 85070-32042 पे।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
9: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
10: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
9: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
10: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
10: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
11: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, नमस्ते मैम।
14: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: जी मैडम,
14: क्या हाल है आपका?
13: ठीक है, अपना बताइए।
14: मेरा भी बढ़िया है।
13: खाना हो गया है?
14: जी, खाना हो गया है। आपका हो गया?
13: हाँ, हम भी खा लिए।
14: तो बताइए क्या हो रहा है अभी?
13: कुछ नहीं, आए हैं ऊपर शोरूम में। छत पे आए, ऊपर
14: धूप नहीं लग रहा है?
13: नहीं, ऊपर नहीं है, अंदर है।
14: तो मौसम तो खराब है?
13: बहुत खराब है, बहुत धूप निकला है।
14: तो धूप से बच के रहिए, घर में रहिए, पानी
13: पीते रहिए। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है।
14: बताइए क्या फरमाई थे आपकी?
13: गाना नहीं है, छोड़ के न जाओ भैया, वही गाना।
14: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहती हैं?
13: आपको और सोली और को सुनाना चाहते हैं।
14: ओके, एक बार नाम अपना बता दे।
13: प्रियंका जी, पूनम
14: जी। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे 90.4 FM।
13: ठीक है।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैं सुवीर कुल बोल रहा हूँ, कोरिजमा जिला देवघर झारखंड में।
0: क्या हाल है आपका?
1: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं और आपके रेडियो रंजन की पूरी टीम कैसे है?
0: मैं ठीक हूँ, मेरे रेडियो रंजन के परिवार सारे अच्छे हैं। क्या हो रहा है अभी?
1: क्या हो रहा है, धूप बहुत ही है, घूमे बैठे हुए। आज ना दीजिए मैम, मदर का सिकंदर फिल्म हो गया ना, किशोर कुमार की आवाज में, और साथ फिर तेरे बिना भी क्या जीना।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: जी आपको सुनाओ, आप सुनेंगे, हम सुनेंगे और जितने भी रेडियो रंजन के श्रोता गाने सभी को सुनेंगे।
0: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर X दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम।

0: हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: नमस्कार।
6: नमस्कार,
5: आप कौन बोल रही हैं?
6: मैं भारती बोल रही हूँ।
5: जी जी, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ मुंबई से। बढ़िया है, तो अच्छा है, अपना नहीं है।
6: मेरा भी ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी?
5: क्या डिप्टी में डिप्टी चालू है अपना। आपसे पहला बार बात हो रहा है, ऐसा लग रहा है।
6: जी, तो क्या करते हैं आप?
5: मेरा काम ड्राइविंग का है, मैं कंपनी में है।
6: बढ़िया है। भोजन हो गया आपका?
5: जी, सुबह नाश्ता हो गया है और दोपहर का लंच होगा 1 बजे।
6: बता दीजिए क्या फरमाइश है आपकी?
5: फरमाइश और सब मौसम का हाल चाल बताइए उधर गोपालगंज का।
6: गोपालगंज का मौसम तो बहुत गर्म है, बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अच्छा,
6: और उधर कैसा?
5: इधर तो बारिश चालू हो गया है, मौसम ठंडा है, सुहाना मौसम है। हाँ,
6: बढ़िया है, उधर मौसम सुहाना है, तो चलिए आपके लिए ठीक
5: है। इधर से मैं भगवान से बोलता हूँ कि भाई उधर भी जाए, इधर गर्म। एक सुना दीजिए।
6: कौन सा?
5: आशिकी आ गई, हमें आशिकी आ गई, अरिजीत सिंह की आवाज में है। यही वाला गाना सुनना है और डेडिकेट आपको भी रहेगा और जितने भी रिम झिम सुनने वाले लिस्टर है सभी को डेडिकेट रहेगा ये सॉन्ग।
6: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिम झिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारा सब खैरियत आपका।
0: जी मैम आपको गाना सुनना था, प्रेम पर से गया था।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: शीशे की उम्र प्यार का, आधा पैसा देगा टूटा जो दिन किसी का है रवि वाला।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: बस मेरे साथ में पार्टनर आशीष सरकार, उसी को।
1: ओके, और सब बढ़िया है?
0: जी मैम बढ़िया है। मैं बहुत दिन बाद कॉल किया, सोचा देखता हूँ लगता है कि नहीं लगता, कल लग गया।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: नहीं मिल पाना मैम काम से, तो आज थोड़ा सोचा ध्यान है क्या, सोमवार है, टाइम पे कॉल करके देखे। ये गाना कब तक आएगा?
1: ये गाना पूरी कोशिश रहेगी आज या कल बज जाएगा पूरा।
0: टाइम शाम के टाइम में 5 से 7?
1: हाँ हाँ
0: जी मैम, थैंक यू।
1: ओके चलिए गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-94-94-53
6: और 9097-61-60-02।
9: Excuse me boss, you have a text message.
10: हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू, सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो हर रोज़ की तरह पुराने गाने की फरमाइश करना है, और जो भी सुरतगण नए गाने की फरमाइश करेंगे उनकी फरमाइश को पूरी नहीं की जाएगी। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें 7277-1665-96 पे। पहला मैसेज लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है, पवन सिंह का भक्ति सॉन्ग, माय नेम इज दीपक एंड जेलर। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है, और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और इस मैसेज को करती हैं अफसाना खातों फ्रॉम फतेह से और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। हेलो सुनो भैया, कैसे हैं? मैं स्वीटी शर्मा वृंदावन से, और मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश। आगे मैसेज लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से जुड़े हुए हैं, और इनके तरफ से भी गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, और बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अब गाने के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पहले गाने के फरमाइश पवन सिंह की आवाज़ में दीपक एंड जेलर जी की तरफ से, भक्ति, तो सुनते हैं और इंजॉय करते हैं।

94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने का फरमाइश करना है। और आज हम फिर से आप सभी के बीच एक सुझाव साझा करेंगे सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। और आज हम जानेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में और डिहाइड्रेशन से क्या होता है। डिहाइड्रेशन वह स्थिति है जब शरीर से पानी और आवश्यक लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है। यह गर्मी के मौसम में अधिक पसीना आने, दस्त, उल्टी या पर्याप्त पानी ना पीने के कारण होता है। कारण यह है, अत्यधिक पसीना आना, कम पानी पीना, दस्त और उल्टी होना, तेज बुखार, लंबे समय तक धूप में रहना, ये सारे कारण है। और लक्षण, अत्यधिक प्यास लगना, मुंह और गला सूखना, कमजोरी और थकान महसूस करना, चक्कर आना, सिर दर्द, पेशाब कम आना या गहरे पीले रंग का होना, गंभीर स्थिति में बेहोशी भी हो सकती है। और इसके होने के बाद उपचार है, रोगी को आराम करने दें और ठंडी जगह पर रखें, बार बार पानी पिलाएं और ORS का घोल दें ताकि पानी और लवणों की कमी पूरी हो सके। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों का रस दें। दस्त या उल्टी अधिक होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और गंभीर स्थिति में अस्पताल में नसों के माध्यम से तरल पदार्थ दिए जाते हैं। और इसके होने से पहले के बचाव हैं, प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, गर्मी में बाहर निकलते समय पानी साथ रखें, ताजे फल और तरल पदार्थ का सेवन करें, अत्यधिक धूप और गर्मी से बचें, स्वच्छ भोजन और पानी का उपयोग करें, ये सारे इसके लक्षण और उपाय हैं। तो इसे कहीं भी आप सभी के बीच परिवार में या आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को हो तो इसका देखभाल किसी को कर रहे हैं तो अच्छे से बताएं और डॉक्टर के पास ले जाएं, या आप जानते हैं उतना उसको मदद करें। ये रेडियो रिमझिम हर रोज़ सेहत से ही लाभ कई के अंतर्गत आप सभी के बीच छोटा छोटा सुझाव साझा कर रहा है। तो आप लोग इसको सुने और अपने जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम में आगे कई मैसेज भी पहुंचे हुए हैं। अगली मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है और सबकी मैसेज तो देखना ही मेरा कार्य है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर हम टाइम से मैसेज किए थे, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हम शामिल करेंगे। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले सफरोज अली गोपालगंज से हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाम अंकुश कुमार, पता गोपालगंज, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुनो भैया, मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से और आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। अगर फरमाइश करूं तो मेरा गाना बच जाएगा कि नहीं? जय माता दी। यदि आपकी फरमाइश पहुंचती है तो बजाने की कोशिश रहेगा। हाँ, आप जब फरमाइश करें तो एक ही बार सप्ताह में गाने की फरमाइश करें ताकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और उनकी फरमाइश जो छूट जाते हैं उन पूरी करने की कोशिश रहता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि और इस गाने की फरमाइश करती हैं अफसाना खातून फ्रॉम फतह से और गाने का बोल देती हैं, ना ना करके प्यार है मैं कर गई। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94 FM पे।

0: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
8: क्यों, क्या हुआ है?
7: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
7: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710392 या 9765065750।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं और आगे गाने के फरमाइश पहले हम बता दें पूरी करेंगे श्वेती शर्मा की और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है कुमार सानू की आवाज़ में ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मारे सांवरे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि सर हमको सुना है जल्दी सुनाइए और इस मैसेज को करते हैं सफरो जल्दी जी तो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले फिर आपके गाने हम सुना देंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हाय कमलेश कुमार मुझे गाना सुनना है फिल्म फूल और कांटे का, तो चलिए आपकी फरमाइश भी हम पूरी करेंगे और कौन से गाने सुनना है ये भी तो बता दें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू भाई मेरे मैसेज नहीं पहुंचा है क्या? मैसेज पहुंचा हुआ था लेकिन आपकी मैसेज हमने देखा काफ़ी पहले पहुंचा हुआ था। आगे मैसेज इनके तरफ से लिखा गया है कि हुई उनकी आँख नम तो हम पुकारे गए, जख्म हमारे दिल के फिर से उभारे गए, एक दफ़ा फिर से उन पर भरोसा किया, फिर से उनके ही हाथों से हम मारे गए। सुनो भाई ना ना करते प्यार हो गई सुपर सॉन्ग। दिलीप राम जी मैसेज करते हैं शिवहरवा बिहार से, तो आप बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश है आपकी भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आगे कहते हैं कि चाहा ना उसने मुझे बस देखता रहा, मेरी ज़िंदगी से वो इस तरह खेलता रहा, ना उतरा कभी मेरी ज़िंदगी की झील में, बस किनारे पर बैठ पत्थर फेंकता रहा। शबाना जी की बेस्ट सॉन्ग, दिलीप राम जी मैसेज करते हैं, तो चलिए आप ये सारे मैसेज हमने शामिल कर दिए हैं और आगे बढ़े। यहाँ पे आगे कई मैसेज लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग सुना दीजिए, उस लड़की पे दिल आया जिसने मुझे सताया। ओ शिव सागर जी, तो बिल्कुल कोशिश है आपकी भी फरमाइश हम प्ले कर दें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया कि सुनो भैया मेरा सॉन्ग, तो बिल्कुल आप ही के गाने हम प्ले करने वाले हैं स्वीटी शर्मा जी, और चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे इस गाने को सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे फिर से, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सोनम भैया, आपको धन्यवाद है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, तुमसे मिलने को दिल करता है, और इस मैसेज को करते हैं कमलेश कुमार जी। तो बिल्कुल दिल करता है तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर आँख पे पानी मार के अपने गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओहो, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले कर दे रहे हैं। और आगे कुछ मैसेज भी पहुंचे हुए, तो फिर मैसेज देखने के बाद से गाने हम प्ले करेंगे। और कहते हैं गाने के फरमाइश से आदमी खिलौना है, अलका याग्निक की आवाज़ में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, एक एक करके सबकी फरमाइश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिल्कुल, और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी और आप सभी श्रोतागढ़ से कह रहे हैं, अपील है आप सभी से कि आप लोग इस कार्यक्रम में गाने सुनना चाहते हैं तो आप मैसेज करें ना कि फ़ोन करें। फ़ोन करते हैं आप लोग तो हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होती है कार्यक्रम करने में, और हम लोग जब भी कार्यक्रम कोई भी चलाते हैं तो उसका एक नियम होता है कि आप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या आप आवाज़ देना चाहते हैं तो आवाज़ के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हर कार्यक्रम के अलग अलग नियम है, जुड़ने के लिए तरीका है। तो आप लोग जैसे कार्यक्रम चले, जिस समय चले, उस माध्यम से आप लोग जुड़े और अपने पसंद के गाने सुने। फिलहाल अभी हमारे पास मैसेज तो कई हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं, तो आप लोग फ़ोन ना करें, आप सभी से विनती है। आगे मैसेज को रोकते हैं और गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सफरोज अली जी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी, आदमी खिलौना है।

104 FM पे बने आप सब और कार्यक्रम SMS फरमाइश के साथ अभी गाने सुन रहे हैं आदमी खिलौना। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मैं आधी नींद में गाने सुन रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा थैंक्स। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेमछेम सुनने के लिए। और इस मैसेज को करते हैं सफरोज अली जी, आगे गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से किए हुए हैं और गाने के फरमाइश करते हैं कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, ओल्ड सॉन्ग है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी। यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचे हुए और लिखा गया है कि प्रणाम भाई कैसे हैं, ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है, सुपर सॉन्ग बिल्कुल बढ़िया है और आप सभी के बीच उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, सविता चौहान। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय सर जी, मुझे भी गाना सुनना है तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और रही बात गाने के फरमाइश की, तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका है, बहुत कम समय बचा हुआ है मेरे पास। तो फिलहाल आगे बढ़ते हुए गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सही भी बिल्कुल अच्छे होंगे। रेडियो के सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी हाजिर हो चुकी हूँ बिल्कुल सही समय पर लेके आपका अपना पसंदीदा शो योर वॉइस योर चॉइस को, जहाँ जहाँ आपकी फरमाइश और आपकी पसंद के गीत बनाते हैं इस दोपहर को और भी खूबसूरत। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस शो और इस सुहाने सफ़र की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि कहा भी गया है,

जैसा कि कहा गया है कि चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सब सुन लिया, साथी प्यार का मैंने चुन लिया। जी हाँ प्यारे प्यारे श्रोताओं, प्यार के खूबसूरत एहसास और मीठी सी मुस्कान के साथ सुनते रहिए सदाबहार नगमा, पहला नशा पहला खुमार, बिना देरी के आज की शो की आगाज करते हैं। और इस दौरान आप सभी हमसे जुड़े रहिए, भेजते रहिए अपने प्यारे प्यारे संदेश, अपनी पसंद और अपने दिल की बातों को हमसे जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, अब से इस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527-88-291। जी हाँ 98527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे जाइए, डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 72-77-16-65-96। और बढ़ेंगे आगे आज की शो को लेकर के। और हाँ तो आइए इस खूबसूरत दोपहर और सभी और भी यादगार बनाते हैं और सुनते हैं दिलों की धड़कनों में बस जाने वाला गीत, पहला नशा पहला खुमार। और तब तक आप सभी मैसेज करिए, तब तक गाने को एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। आप सभी बताइए कि आपके उधर का मौसम का हालचाल कैसा है। इधर तो बारिश हो रही थी और अभी बारिश खुल चुकी है, लेकिन मौसम काफ़ी खूबसूरत हुआ है। तो आप सभी बताइए कि आपके उधर का मौसम कैसा है, गाना कैसा लगा। और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे सोनी, और हमेशा की तरह आपकी फरमाइश से, आपके संदेश और आपके पसंदीदा गीत लेकर मौजूद हूँ आप सभी के बीच। और अभी से लेकर शाम को 4 बजे तक आप सभी के साथ हूँ, तो फरमाइश से भी आपकी रहेगी, संदेश भी आपके होंगे, और गीत का ये खूबसूरत सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत हम समय समय पर सेहत से जुड़ी कुछ जरूरी और उपयोगी बातें भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। और आज हम बात करेंगे स्तनपान के बारे में। जी हाँ, माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राकृतिक प्रक्रिया है। सही जानकारी और जागरूकता से यह सिर्फ बच्चे और आवश्यक पोषण मिलता है, बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी इसके कई लाभ होते हैं। तो आज के कार्यक्रम के दौरान हम इसी विषय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और आसान जानकारियां आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, क्योंकि यहाँ गीत भी है, बातें भी है, और सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारी भी। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली फरमाइश की ओर, और रुख करते हैं अपना व्हाट्सएप मैसेज की ओर। तो आइए देखते हैं आज की योर वॉइस योर चॉइस में कौन कौन से प्यारे श्रोताएं हमसे जुड़ चुके हैं, और किन की गीत साथ इस खूबसूरत दोपहर की शुरुआत करते हैं, किनकी गीत है आज की पहली फरमाइश बजती है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज की तरफ बात करें तो मैसेज काफ़ी सारे पहुँच चुके हैं, और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे मैसेज हैं, और हमारे लिसनर भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए पहले इंस्टाग्राम पे देखते हैं, और क्योंकि यहाँ मैसेज है, और प्रसन्नजीत जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, और फरमाइश के साथ हैं, तो बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है, और झारखंड से जुड़े हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ में। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरा नाम राजीव प्रमाणिक है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, और लिख रहे हैं कि मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ, हर तरफ जंजीर नज़र आती है, मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, हर पन्ने पे तेरा तस्वीर नज़र आता है, क्या बात है। और गाने की फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुक करेंगे, तो यहाँ भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम गुड आफ्टरनून जय माता दी, शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि मुझे भी एक गाना सुनना है, और सुनवा दीजिएगा चमके लूसी सा जी से गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कि डेडिकेट है सबसे पहले आपको, और ख़ास करके प्रमुख भाई निर्मला जी को, और लिसनर को, और लिख रहे हैं कि नाइस ओपनिंग सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका शिवसागर जी, बने रहिए हमारे साथ में। और फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, और बढ़ेंगे आगे आज की अगली मैसेज की तरफ। और यहाँ अगली मैसेज है हमारे पास, लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्कार, धनेश कुमार मिश्रा है दिल्ली से, लिख रहे हैं कि आपका स्वागत है, कैसी हैं बताइएगा ज़रूर, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और आगे लिखते हैं कि कभी हिम्मत ना हारो, ज़िंदगी ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नया दिन आपका इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और मैसेज के साथ है धनेश मिश्रा जी, आगे बढ़ेंगे आगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं अनिश यादव विलेज दुमरा सिवान बिहार से जुड़ चुका हूँ, स्टूडेंट अब खान ग्लोबल से पटना से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि पटना में भी बारिश हुआ है आज, और वहाँ का मौसम कैसा है। तो हमारे यहाँ भी सुबह से बारिश हो रही थी, फिलहाल बारिश जो है वो बंद है, और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून, और कमलेश कुमार जुड़ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत, और गाने की फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। उमा शंकर मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं नमस्ते सोनी मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। दीनानाथ यादव हैं कुवैत से, बहुत बहुत स्वागत। एक और यहाँ मैसेज है, अहमद अली हैं सारिया वार्ड नंबर 1 से, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 से, गुड मॉर्निंग सभी को बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिया। और लिख रहे हैं कि मेरा टाइम हो गया है कि नहीं मैम, तो टाइम की बात करें तो आपका 1 सप्ताह हो चुका है, अपनी गाने की फरमाइश भेज सकते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, और लिख रहे हैं कि
नमस्ते सोनी मैडम जी, कैसन बानी? हम राकेश ले लद्दाख से, और हमार भी फरमाइश बा, और साथ में गुड्डू, मंतोज, संजीव, दीपक, अशोक, जितेंद्र, विजय सबको सुनवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ साधु राय जुड़ चुके हैं छपरा से, बहुत बहुत स्वागत। गुलाम हुसैन है वेस्ट मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, प्रभु जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और मैसेज है, सबीना खातून है दुलदुलिया से, बहुत बहुत स्वागत सबीना जी। और यहाँ मैसेज एक और है, और लिख रहे हैं कि जौहर 1 से 2 बजे के बीच में गाना सुनवा दीजिएगा, लंच टाइम है। जी हाँ बिल्कुल, आपकी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर बताइए आप कौन है, कहाँ से वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, और आगे बढ़ेंगे, आगे और भी मैसेज। यहाँ अशदुल्ला अंसारी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि चाह है तुझे अपने अरमान से भी ज़्यादा, चाह है तुम्हें अपने अरमान से भी ज़्यादा, लगती हो हसीन तुम मुस्कान से भी ज़्यादा, मेरी हर धड़कन हर सांस है तुम्हारे लिए, क्या मांगे चाह मेरी जान से ज़्यादा। ओहो, और मैसेज के साथ है मनीष जाग जी, फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल बनी रही है साथ में, सुनते रहिए रेडियो रंजन को। और यहाँ एक और मैसेज है, अंकुर जी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, गाने की फरमाइश के साथ, बिल्कुल फरमाइश प्ले करने की कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और प्रीति रविदास जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रंजन को। और भी सारे मैसेज है शामिल करेंगे, फिलहाल बढ़ेंगे आज की पहली फरमाइश की तरफ। और पहली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है चमके लो सीसा जी से। और फरमाइश करने वाले हैं शिव सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश थी व्हाट्सएप के माध्यम से, और फरमाइश करने वाले थे शिव सागर दीवाना जी जम्मू कश्मीर से। उनकी तरफ से मैसेज पहुंच चुका है, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए, जय माता दी। और बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास है व्हाट्सएप के इंस्टाग्राम के माध्यम से, और यहाँ मैसेज किए हैं प्रशंजीत जी हैं, जुड़े हुए हैं झारखंड से, और इनको गाना सुनना है। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश है, चूड़ी कंगना सजना ले ले रे बिंदिया गाने की फरमाइश के साथ है। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और शो से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और

और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए माध्यम है आपके पास, नंबर है 98-527-88-291 पे कॉल करिए, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए, या फिर कॉल कर सकते हैं हमें 72-77-16-65-96 पे। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है इंस्टाग्राम पे, रंजन कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है अनीस जी हैं, तो अनीस जी या तो आप फरमाइश करिए इंस्टा पे या तो व्हाट्सएप पे, फरमाइश एक ही जगह प्ले होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका, अभी बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो जम्मू। और यहाँ मदहसन अंसारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, लिख रहे हैं कि नीलकमल का आवाज़ में गाना सुनना है, कोई भी सुनवा दीजिए, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी काफ़ी सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि मोबाइल नंबर चालू कीजिए, तो मोबाइल नंबर चालू भी है और कॉल भी पहुंच रहे हैं, लेकिन समय पे कॉल नहीं आ रहा है। मैसेज करने वाले हैं अहमद अली सारे वार्ड नंबर एक से। और बढ़ेंगे आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, और अभी बताइए कि अभी आवाज़ कैसी जा रही है, आवाज़ कट कट के जा रही है कि नहीं। इशाद मास्टर जी है धनाव से, बढ़ेंगे आगे यहाँ, आगे और भी सारे मैसेज है, वॉइस पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है। शमशीद आलम दिखा रहा है प्रोफाइल पे, नाम तो ज़रूर बताइए आप कौन है, कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा बताइए मैम। और हाय, नाम मेंशन नहीं है, नाम बताइए आप कौन है और कहाँ से, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है जो प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ आबिद खान है टाटा जमशेदपुर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और एक मैसेज है, लिख रहे हैं कि तुझे पसंद नहीं था रोना मेरा फिर आज खामोश क्यों हो, तुझे पसंद नहीं था रोना मेरा फिर आज खामोश क्यों हो, देखो दिल तड़प रहा है फिर आज खामोश क्यों हो, बातें करते थे तुम जान जान कहकर तेरा जान रो रहा है फिर आज खामोश क्यों हो, तुझे पसंद नहीं था रोना मेरा तो फिर आज खामोश क्यों हो। और इस मैसेज के साथ है आबिद खान जी टाटा जमशेदपुर से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से, और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। और अगली फरमाइश यहाँ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो और यहाँ अभी कॉल पहुँचा था और कॉल कट चुका है, तो चलिए बढ़ते हैं व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और अगली फरमाइश लेते हैं। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो मैसेज है किशोर मिस्त्री जी जुड़े हुए और उनको सुनना है गाना, वॉइस पहुँचा हुआ है, तो चलिए प्ले करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।

मेरा नाम है शमशीद आलम। हमारे गांव का नाम है चंदनबारा, थाना ढाका, जिला मुतिहारी, पूर्वी चंपारण। और मैं गाना सुनना चाहता हूँ, जो बीत गया है वो दौड़ ना आएगा। मेरे को यही मैडम, मेरे को यही गाना सुनना है।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, मैसेज लिख रहे हैं नमस्कार राधे राधे, हम भी जुड़ गए हैं। मैयर एमपी से सुनील कुशवाहा जी हैं, लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गाना चल रहा है मैम, दिल दीवाने का डोला। और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो है प्लीज़ मेरा गाना बचा दीजिएगा, हम सनी फ्रॉम सिपाया टोला से और सॉन्ग है हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, गाने की फरमाइश के साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। थोड़ा इंतज़ार करिए, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। आपकी बारी आते ही हम आपकी गाने की फरमाइश को प्ले करेंगे। यहाँ लाल बाबू सिंह जुड़ चुके हैं नवादा शाम भोजपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि लिंक भेज दिए हैं, गाने की फरमाइश है बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे। थोड़ा इंतज़ार करिए, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पुनीत तिवारी जुड़े हुए हैं रोहतास से, बहुत बहुत स्वागत। साथ में है इनके किशोर कुमार जी और गाना है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और बातें होती रहेंगी। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे थे सेहत से ही लाभ कई के अंतर्गत कुछ जरूरी जानकारी, जो कि आज हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में। सेहत से ही लाभ कई के अंतर्गत आज हम स्तनपान की बात कर रहे थे। तो जन्म के बाद शुरुआती 6 महीने तक केवल माँ का दूध शिशु के लिए सबसे उत्तम आहार माना जाता है। माँ का दूध जो होता है बच्चे को आवश्यक पोषण देने के साथ साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं और मजबूत बनाने में मदद करता है। तो बढ़ते हैं आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो पहुंचा हुआ है नवादा से लाल बाबू सिंह है और इनको सुनना है गाना और गाने की फरमाइश है पंकज मतलबी की आवाज में। डांट दियानी कैसे संगतिया पुराना, तो चलिए एंजॉय करते हैं लाल बाबू सिंह जी की फरमाइश पे, उनके पसंद का गाना रेडियो रिमझिम पे।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूर

0: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं सोनी मैम, आज का टेंशन तो बहुत था लेकिन आपकी आवाज़ कानों तक आते ही सारी टेंशन दूर हो गई। और दहिया हमार भोजपुरी सॉन्ग बजाने वाले भाई को दिल से धन्यवाद देते हैं। दिनेश मिश्रा है दिल्ली से और आगे लिखते हैं, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं, हेलो मैम, मेरा नाम विजय प्रसाद है, मैं कुचायकोट बाजार से है और मुझे गाना सुनना है हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का, सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती है, ये गाना बजा दीजिएगा। बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बनी रही हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अभी दस्तक दिए हैं, लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से अभी शो में जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हम रामाय प्रसाद छावे से।
0: जी कैसन बानी?
1: हम ठीक बानी, दिनों ठीक भइल बा, आज मजा आवता, हवा लगाता देह में, ठंडी दिन भइल बा।
0: आज तो बढ़िया मौसम भइल बा।
1: हाँ
0: तो गाना कौन सुना दी आज?
1: गाना सुना दी दो हंसों का जोड़ा छवे गए रे, जो राम विलंब भए रे।
0: जी और सुनाई के भी बा?
1: जितना लोग सुन सब कोई हमें बिमल से मैसेज अभी नहीं लिखा शायद
0: ना, अभी बिमल जी नहीं की जुड़ल।
1: हाँ
0: जी, तो गाना प्ले कर दे ले बनी।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल करने।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, फरमाइश करने वाले थे रामाजी प्रसाद थावे से और काफी बढ़िया गाने

की फरमाइश थी, ओल्ड इज गोल्ड यानी की फरमाइश। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश है व्हाट्सएप के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर से कमलेश कुमार जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 94.4 FM।

0: मेरे हाथों में तू अपना हाथ दे दे।
1: और यहाँ कमलेश जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए मैडम जी, जय माता दी।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज है, फरमाइशें हैं और सबका कहना है कि मेरी बारी है और बजा दीजिए। बिल्कुल कोशिश है आप सबकी फरमाइशें प्ले करने की। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्कार सोनी मैडम जी, हम भी सोच से जुड़ गए, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है। सन्यासी रंजन बाबा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैडम जी, क्या यही फरमाइश व्हाट्सएप नंबर है? जी हाँ, यही व्हाट्सएप नंबर है फरमाइश करने वाला। यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश भेज सकते हैं मैसेज करके, या फिर अपनी आवाज़ में वॉइस रिकॉर्ड करके, और अपना नाम पता ज़रूर मेंशन करिए कि आप कौन हैं, कहाँ से शो में जुड़े हैं, ज़रूर बताइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ बिमल कुमारी जुड़ चुकी है फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास है इंस्टाग्राम से मैसेज पहुंचा हुआ है, और मैसेज करने वाले हैं मधुसूदन अंसारी जी, और इनको सुनना है नीलकमल की आवाज में गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं और अभी गाना सुन रहे थे। मधासन अंसारी जी की फरमाइश थी और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ और यहाँ मैसेज है, प्रभु जी जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश जो है कल ही प्ले किए थे और इस शो में रूल है कि गाने की फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद ही पूरा करते हैं। शो में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अगली फरमाइश जो है आपका बुधवार को प्ले होगा, तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बाकी आप सारे मैसेज कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज है और लिख रहे हैं कि हमारा बारी कब आएगा, आपका भी बारी आएगा। और मैसेज करने वाले हैं नाम है राकेश जी लेह लद्दाख से, बिल्कुल आपकी बारी आएगी और आपकी बारी आ चुकी है। और यहाँ मैसेज है विमल जी का, लिख रही है कि मेरा गाना भी सुना दीजिए, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश से सुनाएंगे। एक और यहाँ मैसेज है और विकास कुमार जी जुड़े हुए हैं हाजीपुर वैशाली से, बहुत बहुत स्वागत, लिख रहे हैं कि आज मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिए, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे बढ़ेंगे तो आगे और भी सारा मैसेज है, यहाँ है मैसेज लिख रहे हैं कि सपनों की दुनिया में हम खोते चले गए, मदहोश ना थे मदहोश होते चले गए, ना जाने क्या बात थी उस चेहरे में, ना चाहते हुए भी उसके होते चले गए। और मैसेज के साथ है मनीष रजाक जी फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से। और यहाँ वीरेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, और नाम मेंशन नहीं है, नाम जरूर बताइए आप कौन कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, अनुराधा गुप्ता थावे से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। एक और मैसेज है, लिख रहे हैं मेरा गाना कब बजेगा, बिल्कुल बजेगा विजय प्रसाद जी, हैं आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली गाने की फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है लेह लद्दाख से और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका राकेश जी। तो चलिए गाने की फरमाइश आपकी प्ले कर दिए, एक डॉक्टर बाबू बताई दवाई, एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: लगाया जा सकता है।
1: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है। मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रंजन 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस। 1:13 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले कुछ मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरा भी एक गाना है, एक हफ्ता हो गया है, गाना प्ले कर दीजिएगा। सगीर आलम अंसारी हैं तेजपुर आसाम से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है और लाइन है, लिख रहे हैं कि अर्ज किया है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को दिल का नजराना पसंद है, औरों की पसंद का तो पता नहीं पर मुझे आपका मुस्कुराना पसंद है। और मैसेज के साथ है सबीना खातून जी दुलदुरिया से, और आगे लिखते हैं कि बादलों ने पूछा किसे याद कर रहे हो, हमने मुस्कुराकर कहा जिसे बारिश पसंद है। ओह, और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जी में।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
1: जी मैं भूमि मंदोत परसानी से बोल रही हूँ।
0: जी कैसे हैं भूमि जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। आपके बगल में रेडियो चल रहा है क्या?
1: नहीं तो
0: आवाज आ रही है?
1: नहीं पहले चल रहा था। अच्छा, अब उधर से इधर आ गए हैं।
0: जी तो कौन सा गाना सुनवा दे भूमि जी?
1: सुना दीजिए, मैंने पायल है छनकाई, यही वाला।
0: और सुनवाना भी है
1: जी आपको, और मेरे घर कस्टमर आए वो सुनेंगे।
0: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
1: धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाने के बारे में।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और गानों की सिलसिला जो है वो तो जारी रहेगी। और जैसा कि हमने बात की थी कि सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं स्तनपान की। और स्तनपान जन्म के तुरंत बाद आती है और शुरू होती है। 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही शिशु के लिए सबसे उत्तम आहार होता है। और स्तनपान केवल शिशु के लिए नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और पर्याप्त आराम लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज हैं, और मैसेज है कि हम भी हैं क्या, मेरा भी गाना बज सकता है। बिल्कुल बजेगा, आपके भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश जो हमारे पास है, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। और गाने की फरमाइश है,

नाम नहीं दिख रहा है, और आबिद खान है टाटा जमशेदपुर से जुड़े हुए, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश आपका फ्लेम प्ले कर दिया और धूम मची है गाने की फरमाइश के साथ है। तो चलिए इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रंजन को।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899227567 या 97714861.
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
9: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम 94.4 FM में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, लिख रहे हैं कि हेलो मैम मेरा भी गाना है, बजा दीजिए, मुबारक हो तुमको ये शादी, तुम्हारी गाना सुनना चाहते हैं। और अयान राजा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बनी रही हमारे साथ में। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग। और यहाँ एक मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसी हैं आप? और आज मेरा भी, आज मेरी सरहज पूजा जी का बर्थडे है, उनके लिए मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, और उन्हीं के लिए डेडिकेट सॉन्ग सुना दीजिएगा, कितना हसीनी चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। और इस गाने के साथ जुड़े हुए अनिल जी चोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपके गाने की फरमाइश है तो ज़रूर प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 94.4 FM को, थोड़ा इंतज़ार करिए। और आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि मेरा गाना भी बजा दीजिए। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो दिव्या जी कैसी हैं आप, ठीक है ना? गोपालगंज का मौसम कैसा है? और हम भी जुड़ चुके हैं, रामू जी जुड़े हुए हैं हर भाषा से, बहुत बहुत स्वागत रामू जी आपका, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और गोपालगंज के मौसम की बात करें तो आज काफ़ी बढ़िया मौसम हुआ है और बारिश हुई थी सुबह, फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। बढ़ेंगे आगे आज को अगली फरमाइश की तरफ से, और अगली फरमाइश है कुचायकोट बाजार से विजय प्रसाद जी को, और इनको सुनना है गाना, ना चाहे सोना चांदी ना हीरा मोती है। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और भी गाना सुन रहे थे, विजय प्रसाद जी की फरमाइश थी, लिख रहे हैं कि ये गाना नहीं। ओहो, तो गाने का नाम जो है अच्छे से लिखा करिए, गाने का नाम जो आप लिखे हैं वो गाना सर्च करने के बाद यही गाना आया। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और लिख रहे हैं कि हिंदी गाना था, आप भोजपुरी गाना प्ले किए। और अगली फरमाइश हमारे पास है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है, बजा दीजिए। मनीष सजाग जी हैं फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे। तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
9: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द, या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
11: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
11: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं अपने शो से, शो में जुड़ने का माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप इस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि शायर तो नहीं हम शायरी बना देंगे, आपको शायरी में कैद कर लेंगे, और कभी सुनाओ हमसे अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ को हम गज़ल बना देंगे। और मैसेज के साथ है मनीष रजाक जी फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे और यहाँ गणेश कुमार जुड़ चुके हैं पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। और बढ़ेंगे आगे यहाँ और भी मैसेज है लिख रहे हैं कि मनीष रजाक के ये दो गीत पहले गाना बजा था, ओहो नहीं दो दिन पहले तो नहीं बजा था इनका गाना। और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका सनी गोपालगंज से, बढ़ेंगे आगे यहाँ। आगे एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि हाय अस्सलाम वालेकुम, और नाम अभी लिख रही हैं और मैसेज करने वाली हैं नाम है इनका सुहाना फ्रॉम सासामुसा से, बहुत बहुत स्वागत सुहाना जी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश है अनिल जी का छोटपुर से, और इनको सुनना है गाना कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें। और गाने की फरमाइश की है आज इनकी सरज पूजा जी का हैप्पी वाला बर्थडे है और उनको गाना डेडिकेट किया, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए। और मेरी तरफ से भी उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दे दीजिएगा और इन्जॉय करिए अपनी फरमाइश के गाने रेडियो रिमझिम पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, फरमाइश करने वाले थे अनिल जी छोटपुर से लिख रहे हैं थैंक यू सो मच, और मेरी शरद पूजा जी की तरफ से भी थैंक यू सो मच। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारी उद्घोषक महादेव जी, सादर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत तुझे मुझे, मेरे यार मूवी का, दिलवाले मूवी का गाना, वेरी नाइस सॉन्ग। और मनीष रुजाक जी हैं, और आगे मैसेज है, लिख रहे हैं कि मोहब्बत सिखाकर जुड़ा हो गए, मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गए, ना सोचा ना समझा खफा हो गए, दुनिया में किसको हम अपना कहें अगर तुम बेवफा हो गए। और मनीष रुजाक जी की तरफ से ये मैसेज है। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम थोड़ी काम में बिजी था इसलिए मैसेज नहीं कर पा रहा था, आपका शो लगातार सुन रहा हूँ। और आगे लिख रहे हैं कि तकदीर लिखने वाले एक एहसास कर दे, तकदीर लिखने वाले एक एहसान कर दे, मेरे दोस्त की तकदीर में एक और मुस्कान दे दे, ना मिले कभी दर्द उनको तू चाहे तो उनकी किस्मत में मेरी जान लिख दे। और मैसेज के साथ है धनीश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और सनी फ्रॉम सिपाया टोला से जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट सॉन्ग आपका होगा, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है सुहाना फ्रॉम सासामुसा से जुड़ी हुई है, और उनको सुनना है गाना ढूंढे यकिया। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दें, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम पे।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
0: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
7: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और यहाँ गुलाम हुसैन है वेस्ट मुंबई से गाने की फरमाइश के साथ, बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि अंकुर जी जुड़े हुए उत्तराखंड से नैनीताल से, बहुत बहुत स्वागत, फरमाइश है बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले मैसेज है, लिख रहे हैं कि जीजा के सामने सालियों का मुस्कुराना तो एक ठगने की अदा है, और जो जीजा मुस्कुराहट देखकर खर्चा करे वो एक नंबर का गधा है। और मैसेज के साथ है सन्यासी रंजन बाबा जी। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है इंस्टाग्राम पर, और मैसेज करने वाली हैं सलोनी जी थावे से, और गाना सुनना है इनको गोरिया चुराना मेरा जिया। तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, हुस्न है सुहाना, आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दी है, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी थावे से सलोनी जी का और इनकी तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मेरा इतना जल्दी सॉन्ग बजाने के लिए। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं क्या है मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और रोहित जी देहरादून से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश है, हम जानते हैं तुम मुझे बर्बाद करोगे। तो चलिए अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं आपके और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका सनी फोर सिपाया से, तो फ्रॉम सिपाया से। तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: सुधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99 393 65 930।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रूम सिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:12 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और हमारे से जो है काफ़ी सारे हैं और अभी अभी मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि ये दिल भी क्या कमाल की चीज़ है, पहले लोग इसे भी जी भर के खेलते हैं, फिर मन भर जाने पर खिलौना की तरह तोड़ देते हैं। और इस मैसेज के साथ है सन्नी जी और गोपाल भाई से जुड़े हुए हैं। यहाँ मैसेज है, मैडम जी हमारा नंबर कब आएगा? बिल्कुल आपका भी नंबर आएगा और समय इशारा कर रहा है दोपहर समाचार का, तो कहीं मत जाइए, गानों का सिलसिला जो है जारी रहेगा और सुनते रहिए रेडियो रमसिम 90.4 FM को। और जैसे कि हम बात कर रहे थे आज सेहत सही लाभकारी के अंतर्गत स्तनपान के बारे में, जो कि जन्म के बाद शुरुआती 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही शिशु के लिए सबसे उत्तम आहार होता है। तो यदि किसी माँ को स्तनपान से जुड़ी कोई भी परेशानी या सवाल हो तो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह लेने में संकोच नहीं करना चाहिए और 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी आहार जो होता है वो शुरू किया जा सकता है, लेकिन 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने की सलाह दी जाती है। अरे बढ़ेंगे आगे, यहाँ और भी सारे मैसेज शामिल करेंगे और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन समय इशारा कर रहा है कि 2:14 हो चुके हैं, 1 मिनट और बचा है, तो चलिए गानों की फरमाइश जो है जिनकी भी छूट गई है दोपहर समाचार के बाद पूरा करेंगे। आप सब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिएगा रेडियो रिमझिम को। और जिनकी भी फरमाइश छूट गई है वो एक बार मैसेज करिए कि हमारी फरमाइश से बाकी है और दोपहर समाचार के बाद फिर से आप सभी के बीच हाजिर होते हैं आपके अपने पसंद के सो योर वॉइस योर चॉइस में। फिर आपकी बची हुई जो फरमाइश है उसे प्ले करेंगे, सुनेंगे कि कौन से गाने की फरमाइश है। तब तक मिलते हैं आप सभी से दोपहर समाचार के बाद।
1: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और छोड़ लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
9: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
7: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
8: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
7: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
8: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
8: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
13: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट, गोपालगंज।
13: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
16: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
17: क्यों, क्या हुआ है?
16: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
17: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
16: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
13: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
18: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
19: रेडियो रिमझिम,
18: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894-18744।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:46 हो रही है स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप इस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुँचे हैं और अभी मैसेज है। नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर बताइए आप कौन है, कहाँ से। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि राजीव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है यहाँ पे भी, हमने कहा ए बारिश जरा थम के बरस, हमने कहा ए बारिश जरा थम के बरस, जब मेरा दोस्त आ जाए तो जम के बरस, पहले ना बरस कि वो आ ना सके, उसके आने के बाद इतना बरस कि वो जा ना सके। और लिख रहे हैं कि ये शायरी आपके लिए है, मैम और दिनेश मिश्रा है दिल्ली से, इनकी तरफ से पहुंची हुई है ये शायरी, काफ़ी बढ़िया। और बढ़ेंगे आगे।

गाना है और मेरा भी गाना बजा दीजिए। असदुल्ला जुड़े हुए हैं झारखंड से, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रमजिम को। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, आज की अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश है चंदन पुनीत रौना कभी नास केसरिया पासवान जी जुड़े हुए हैं। और

0: अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: धन्यवाद।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे पुनीत तिवारी जी, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश थी। बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, वो है नाम है इनका वीरेंद्र कुमार जी, जो कि जुड़े हुए हैं। वैभव बैंगा ललिता बगैया से और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और इनका सुनना है गाना जानवर फिल्म से कसम कसम है कसम की, गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

अरे हाँ, वीरेंद्र जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए। और नाम नहीं पढ़े तो नाम बिल्कुल पढ़े थे कि वीरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। और वीरेंद्र जी की फरमाइश एंजॉय करिए।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ मैसेज है और कुमार सानू का हिंदी गाना सुनना है। रोशन, पुनीत, चंदन, अरविंद और अविनाश जी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपको गाना सुनना है कुमार सानू का हिंदी, कोई भी गाना सुनना है या फिर कोई गाना सुनना है ज़रूर कन्फर्म करिए। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है पुनीत तिवारी जी की तरफ से, लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना बजाने के लिए। बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ। और प्रीति रहदास जी हैं, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है बजा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ बढ़ेंगे अगली फरमाइश जो है कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। और यहाँ कॉल पहुंची थी और कॉल रिसीव करते ही कट गया, फिर से पहुंच चुका है, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: धन्यवाद
0: जी।
1: हम आरजे सोनू बोल रहे हैं।
0: जी जी, वो तो हम पहचान लिए।
1: अच्छा, तो कार्यक्रम चल रहा है।
0: चल रहा है, तभी तो आपका कॉल आया हुआ है कार्यक्रम में।
1: चलिए हमको भी एक गाना सुना दीजिए।
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे। कौन सा गाना सुनवा दे बता दीजिए।
1: गाना सुनेंगे हम राधे श्याम रसिया का, समय केहू के ना छोड़ लेबा।
0: निर्गुण
1: केहू के छोड़ी
0: समय कहाँ के होके छोड़ी, आज ना तो कल पकड़बे करें। वैसे है कहाँ आप?
1: हावे,
0: क्या करने गए हैं?
1: कॉलेज गए थे, अभी अभी ट्रेन से उतरे हुए हैं।
0: अच्छा, तो गाना प्ले कर दिए हैं, खाना होना हुआ है कि नहीं? अभी
1: ना, अभी अभी तो ट्रेन से उतरे हैं।
0: तो जहाँ है वही खा लीजिए, वहाँ मिल नहीं सकता है?
1: हाँ मिलेगा, तो ट्रेन से बाहर आ गए हैं, अभी आगे बैठे हैं, कॉल लगा है, बात हो रही है, गाना सुना जाएगा, उसके बाद आगे के कार्यक्रम में लगा जाएगा।
0: चलिए बढ़िया है, तो गाना प्ले कर दिए।
1: हाँ चलिए सुनवाइए, और हमारे जितने भी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं उन सभी को डेडिकेट रहेगा मेरे तरफ से।
0: चलिए एंजॉय करिए अपने गाने को। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे आज सोनू जी, और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश से और अगली फरमाइश, यहाँ काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, लिख रहे हैं कि क्या मेरा गाना नहीं बजेगा। बिल्कुल बजेगा आपका भी गाना। और विकास कुमार जी हैं हाजीपुर वैशाली से, और आपके भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फरमाइशों का सिलसिला तो जारी रहेगा, फिलहाल बढ़ेंगे आगे। और आज हम बात कर रहे थे सेहत से ही लाभ कई के अंतर्गत स्तनपान, जो कि जन्म के तुरंत बाद शुरू होने वाले 6 महीना केवल माँ के दूध शिशु के लिए सबसे उत्तम आहार माना जाता है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। और अभी तक हम सब बात कर रहे थे कि 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी आहार शुरू किया जा सकता है, लेकिन 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने की सलाह भी दी जाती है। और साथ ही परिवार का सहयोग और सकारात्मक माहौल माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये थी स्तनपान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई भी बात हो तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लें। इनके बीच आप हर बार एक छोटी छोटी सी लाइन इसके बाद आप हर छोटी छोटी चीज़ जो है उसका ध्यान रखकर आप अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। और बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज धान का बीज डाल रहे हैं, इसलिए टाइम टाइम से जुड़ रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि आज हम घर पे हैं। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से। चलिए अच्छी बात है, कभी तो छुट्टी लेनी चाहिए काम से, और वैसे मूड फ्रेश रहता है। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि थैंक यू बोल दीजिएगा आज सोनू सर को मुझे सॉन्ग डेडिकेट करने के लिए, क्योंकि सॉन्ग जो था ऑल लिसनर को डेडिकेट था। और मैसेज करने वाली हैं प्रीति रैदास जी लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश जो है इन्हीं की तरफ से है, और गाना सुनना है इनको, मिले जो तेरी नैना हमारी नैना से। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिए, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और यहाँ मैसेज है लिखने की, कॉल या इंस्टाग्राम करने के लिए क्या नंबर है? तो इंस्टाग्राम जो है हमारा रेडियो रिमझिम के नाम से है, और कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 7277165। और कॉल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इंस्टा और व्हाट्सएप नहीं यूज करते हैं, और या तो व्हाट्सएप पर आप गाना सुनिए या तो फिर कॉल करके। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका मैयर, MP से जुड़े हुए हैं वीरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ उमा शंकर मिश्रा है, लिख रहे हैं कि झकास, और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही मस्त गुनगुना रही है, ऐसे ही लगे रहिए। और मैसेज करने वाले हैं सनी जी गोपालगंज से, और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्रीति जी का गाना फरमाइश, सुंदर फरमाइश लग रहा है, और यहाँ बारात का परछावन हो रहा है, माइंड ब्लोइंग सॉन्ग। और मैसेज करने वाले अनिल जी चोटपुर से, बढ़ेंगे आगे, यहाँ प्रीति जी की तरफ से भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि एंजॉय कर रही हूँ मैम, थैंक यू सो मच मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए और साथ में गुनगुनाने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ रोशनी हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना, और बथुआ बाजार के डॉक्टर है डॉक्टर सूरज कुमार जी, हड्डी रोग विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आप बढ़ेंगे आगे जी की अगली फरमाइश की तरफ, और आज की अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है गाने की फरमाइश है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं विकास कुमार जी हाजीपुर वैशाली से, और इनको सुनना है गाना क्रांति फिल्म से। तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे। नाम है इनका विकास कुमार जी, जो कि हाजीपुर वैशाली से जुड़े हुए थे और लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इंद्र देव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश कौन सी है। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: मैं निर्मला कुमारी जादूपुर से।
0: जी, क्या हाल चाल है निर्मला जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है, कैसी हैं?
1: अच्छी है।
0: तभी क्या कर रही थी आप?
1: बैठे थे, कॉल लगा रहे थे आपके पास।
0: खाना पीना हुआ?
1: नहीं, अभी नहीं हुआ है।
0: तो कब होगा बताइए? 3:30 हो गया।
1: सॉन्ग सुन कर जाकर खाएंगे।
0: सॉन्ग सुनने का इंतजार कर रही थी कि कॉल लगे और गाना सुने।
1: हाँ।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनवा दे फिर।
1: नहीं
0: निकला,
1: पटना घुमा दीजिए।
0: कौन सा? पटना घुमा दीजिए। किसके आवाज में है?
1: नहीं,
0: आवाज नहीं। हाँ, वो तो गाना के नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन गाना सुने नहीं है। एक गाना है आवा राजा पटना, कि हमके पटना घुमाई दा राजा जी, ये वाला गाना बोल रही है क्या? अच्छा, विनय पांडे की आवाज में है गाना, सही है? आप सुनी है?
1: ठीक है,
0: क्योंकि हम नहीं सुने हैं गाना, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं।
1: ठीक है मैम, सुने हम लोग।
0: चलिए, तो प्ले करें गाना।
1: ठीक है,
0: ओके। एंजॉय करिए गाने को और खाना खा लीजिए, ऐसे भी खाना खाने का समय बीत रहा है।
1: ओके,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल की।

0: चला।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 3:40 हो चुके हैं टुडे घड़ी में और 20 मिनट में आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो लिख रहे हैं कि हेलो मैम, सरफरोज अली आकल टोला से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं गाना सुनना है और बहुत जताते हो प्यार हमसे अलका याग्निक की आवाज़ में। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करने की कोशिश है, बनी रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिलहाल हम गाना सुनने जा रहे हैं, गाना है इस तरह आशिकी का मजा लीजिए और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका रोशन जी और साथ में इनके हैं पुनीत चंदन और अविनाश और सभी को मिलकर गाना सुनना है। तो चलिए आप सभी की फरमाइश जो है इस तरह आशिकी का मजा लीजिए। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे रोशन जी की फरमाइश से और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि आप तो सबका ख्याल रखती हैं, अपना भी ख्याल रखा करिए। उमा शंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बिल्कुल अपना ख्याल रखते हैं। और अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप सभी का ख्याल कैसे रखेंगे, आप सभी के बीच कैसे पहुँचेंगे। और यह अगली फरमाइश हमारे पास है अलका याग्निक की आवाज़ में और गाना है बहुत ही जताते हो प्यार हमसे। तो चलिए आपकी भी फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं और फरमाइश करने वाले हैं सरफरोज अली जी अकिल डोला से। तो एंजॉय करिए अपने गाने की फरमाइश को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
3: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 3:54 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास। और मैसेज है यहाँ लिख रहे हैं कि नाइस आवाज़, थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए।

बनाने के लिए और मैसेज करने वाले हैं सबको, जल्दी जी अकिल टोला से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और मैसेज करने वाले हैं उमाशंकर मिश्रा जी दिल्ली से। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि क्या बात है मैम, फिर बारिश करवाना है क्या। और ऐसे ही गाते रहिए। और दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है। और अभी अभी शो से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, गाना सुनना चाहते हैं। और गाना सुना दीजिए, क्या हाल है मैडम जी। बिल्कुल बढ़िया, और हम भी जुड़ गए हैं। नाम है इनका चंदन कुमार जी, गुरमोहा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रमसिम को। और आगे यहाँ और भी काफ़ी सारे मैसेज हैं और फरमाइशें भी है, तो जिनकी भी फरमाइश और मैसेज तो सबकी शामिल हो चुकी है, और जिनकी भी फरमाइशें बची है, कल फिर से जुड़िएगा इसी शो में यहीं पे। और इसी समय पे पूरी कोशिश रहेगी कि कल हम आपकी गाने की फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रमसिम को। फिलहाल यहाँ प्ले करने जा रहे हैं, गुरमोहा से फरमाइश पहुँची हुई है, फरमाइश करने वाले हैं चंदन कुमार जी। और गाने की फरमाइश है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो इंजॉय करते हैं चंदन जी की फरमाइश पे, दिल तो पागल है का टाइटल ट्रैक। दिल तो

और यहाँ चंदन जी की तरफ से मैसेज पहुँच चुके हैं, लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना बजाने के लिए। और यहाँ गणेश कुमार पिपरा नारायण से बोल रहे हैं कि सुपर सॉन्ग और बाय बाय दी, आप सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं, नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034648652 पे।
10: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम
10: सुनो दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
1: और 9097-6160-02।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
7: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
8: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
7: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
8: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
8: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: तू जो है,
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99-393-65-930।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
1: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434, 6200042434।
8: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
5: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का

0: मोबाइल नंबर है 76545 67 600 66।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधा

0: सुविधाजनक शाखाएं।
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी दो शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टेबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया आईटी का पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासी खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
4: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
5: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैडम,
2: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: ओके, मैं अनान बोल रहा हूँ कपूरा से। बहुत दो टाइम के बाद आ रही है। आप कहाँ, घर चली गई थी क्या?
2: नहीं, मैं भी यही थी।
1: आज कौन सा गाना सुनाइएगा मैडम?
2: बता दीजिए अपनी पसंद, मैं सुनाऊंगी वही।
1: अरे आपने, आपके पसंद से सुन लेना है गाना, कोई सुनाइए गाना। तो हम लोग पुराने किस्म के आदमी है, तो वही टाइप के कोई गाना सुनाइए अपने पसंद, कोई फिल्मी गाना
2: जी
1: ना दीजिएगा, बोलिए।
2: मैं तो सुनाऊंगी, मैं तो हमेशा सुनाते रहती हूँ, मेरा तो हमेशा बजते रहता है।
1: हमारे पास से सुनाती है ना आप?
2: अच्छा ठीक है, सुना दूंगी, बता दीजिए।
1: मूवी तो बताएंगे तो आपको गाना मिलेगा ना।
2: अच्छा,
1: एक है बहुत पुराना, एक है मूवी है हंटर वाली, एक है सज्जो रानी। तो दोनों में से कोई ढूंढ लीजिएगा।
2: ओके,
1: तो उसी का कोई गाना सुना दीजिएगा मेरा। और आपके सब काम धाम कैसा चल रहा है रेडियो स्टेशन पे?
2: बहुत अच्छा चल रहा है।
1: मन उगता नहीं है ना?
2: नहीं, मन नहीं उगता है, अब दिन भर काम में लगे रहते हैं लोग, गाना सुनते रहते हैं लोग, तो नहीं।
1: गाना भी है, कितना फरमाइश है, कितना एडवर्टाइज है। आपका आवाज एडवर्टाइज जो आप करती है ना, उसमें आप डाली है कि शुक्रवार को फलाने टाइम पे फलाने टाइम पे, हाँ कितने नंबर पे आपको गाना है ये सुनना है, आप गाना रिक्वेस्ट करें, तो ये जो आपका एडवर्टाइज बहुत अच्छा लगता है, सेंस सेंस सोनी के जैसा एकदम
2: जी।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगता है हमको, बीच बीच में आता है आपका एडवर्टाइज, तो बहुत अच्छा लगता है हमको। आपको मतलब पूरा उसमें लगता है, पूरा आपके एक्सपीरियंस में है आप। हमको बहुत अच्छा लगा
2: जी जी, अच्छा करने के लिए।
1: अरे आपको दुआ है मैडम आपके पास, कि आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म दिखाएं। ठीक है मैडम, तो
2: ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं आप?
1: हम तो घर में ही बजाते हैं गाना, घर वालों को सुनाते हैं, रेडियो खोल देते हैं, सुनते रहता है लोग। और बाकी जो हमारा रिमझिम का रेडियो प्रेमी है, उन्हीं लोग को गाना सुनाएंगे। सारे तो आप ही हैं
2: जी। बिल्कुल, मैं तो है।
1: आपको बोला हम कैसे छोड़ देंगे। आप ही सुना रहिए गाना, आप ही का नाम डेडिकेट रहेगा
2: जी। बिल्कुल
1: ठीक है मैडम, सुनाइए
2: गाना, करते हैं, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते,
0: नेहा बोल रहे हैं भोरे से।
1: जी जी, क्या हाल है नेहा जी?
0: अच्छा, आपने बताया मैडम जी, कैसा है?
1: मेरा भी ठीक है। तो और सब ठीक है ना? घर परिवार में सब ठीक है ना?
0: ठीक है, आप लोग का दुआ से सब ठीक।
1: तो बताइए, खाना हो गया है आपका?
0: जी अपना हो गया मैडम जी, नाश्ता खाना।
1: मेरा भी हो गया है
0: जी।
1: बताइए, क्या फरमाइश है आपकी?
0: दिल वाला फिल्म की।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: एक ऐसी लड़की थी उससे प्यार करता।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: आपको जितना रेडियो रिमझिम आरजे है या दोस्त सब सुनते हैं सबके साथ।
1: चलिए फिर, ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते मैडम जी।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: हेलो, बस स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माइक में।
11: जी नमस्कार मैडम जी।
12: नमस्कार
11: जी मैडम, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ से बोल रहा हूँ।
12: जी क्या हाल है आपका?
11: बस प्रेम जी से आनंद ले रहा है। जी
12: भोजन हो गया?
11: हाँ हो गया ना।
12: अभी क्या कर रहे हैं?
11: जी अभी कुछ नहीं, बैठे हैं और रेडियो सुन रहे हैं।
12: चलिए बढ़िया है, बताइए क्या फरमाइश है आपकी।
11: जी बहन जी, भोजपुरी सॉन्ग सुना लेंगे क्या आप?
12: जी बिल्कुल सुनाएंगे।
11: नाम है नरहुआ हिंदुस्तानी और गाने बोले नई जुलनी के सैया बलम दोपहरिया बना ले हो।
12: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
11: जी जी जी, अपने गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा है और मांगीलाल धाकड़ है बड़ा गाँव से, और ये आपको भी डेडिकेट है बहन जी।
12: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो 90.4 FM।
11: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्ते।
1: नमस्ते
0: जी मैम, मैं अंकित जैन मकसूदनगढ़ से बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हाल है आपका?
0: जी मैम बस बढ़िया है, कहते हैं दुकान पर और आपका रेडियो इंजॉय कर रहे हैं। जी और आप कैसे हो?
1: मैं बढ़िया हूँ
0: जी। मुझे एक गाना सुनना था, खलनायक मूवी का है। जी वो टोली के पीछे क्या है।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: जी ये है मेरा एक दोस्त है सुनील साहू जी, उसको डेडिकेट करना और आपको भी।
1: ओके और तबीयत वगैरह ठीक है ना?
0: बस मैम बढ़िया है।
1: उधर का मौसम कैसा है?
0: बस कभी धूप निकल रही है तो कभी पानी।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76-545-67-666।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: नमस्ते मैम।
13: नमस्ते,
14: कैसी हैं मैम?
13: मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए।
14: कहाँ पे हैं आप? आपकी आवाज बहुत कट जा रही है, सुनाई तो दिया लेकिन कटने लगा फिर।
13: सुनाई दे?
14: हाँ दे रहा है। और खाना हो गया आपका?
13: हाँ हो गया।
14: तो सब घर परिवार में कैसे हैं?
13: सब ठीक है।
14: बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
13: कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं।
14: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहती हैं?
13: मैम नया वाला।
14: ओके, नया वाला सुनाऊंगी। और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
13: जी मैम, घर में सभी को और रेडियो रंजन सुनने वाले सभी दोस्तों सभी।
14: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: और क्या हाल है भारती जी?
0: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
1: हमारा भी ठीक है, छुट्टी में है, आज छुट्टी रहता है तो सोचा कि हाजिरी तो लगा ही ले।
0: जी बिल्कुल,
1: लगता है पहला कॉल लगी है।
0: हाँ हाँ, पहला ही कॉल है आपका।
1: अच्छा जी,
0: और बताइए क्या हाल है आपका?
1: ठीक है।
0: खाना हो गया है?
1: खाना तो नहीं हुआ है अभी। आप, मैं सोचा कि अभी कॉल करके ही खाऊंगा।
0: बताइए तब क्या फरमाइश है आपकी?
1: और सोनी जी का क्या हाल है?
0: सोनी जी भी अच्छी हैं।
1: यही यही मनोरंजन करने का है, और क्या। चलिए ठीक है, एक आज गाना है, ये किस तिवारी का गाना है
0: जी, बताइए कौन सा।
1: नून रोटी खोइयो बाकी करियो जनी कर्जा, ये किस तिवारी का है।
0: किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: डेडिकेटेड पहले नंबर भारती जी है, सोनी जी है, और भैया भाभी है, और रामा जी प्रसाद है थावे वाले
0: जी, जी
1: प्रमुख जी भी है, सन्यासी रंजन बाबा भी है, यहाँ जो है वो सुन लेंगे। चलिए फिर मैम, अगले बार बात होगा। और
0: जी जी बिल्कुल, ओके, थैंक यू। गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें रेडियो।
1: थैंक यू थैंक यू।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
3: और 90-97-61-60-02।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क 99-393-65-930।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
11: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
11: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18-744।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो जी, नमस्ते।
14: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम माय चॉइस में।
15: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार चूसा संग्राम कोना मरती पंडित चंपारण बिहार से संजय कुमार साहब।
14: जी जी, क्या हाल है आपका?
15: हाँ, मेरा हाल खबर बढ़िया है। आपका विश्वास है कि आपको आपको हाल खबर ठीक होगा?
14: जी जी, मेरा भी बढ़िया है।
15: लेकिन फिर भी अपना और सब टीम को बताइए क्या है उनका हाल खबर।
14: सारे लोगों का ठीक है।
15: चलिए, गर्मी है ज्यादा, क्यों ना है गर्मी के मौसम बताइए।
14: मौसम गर्म है,
16: आपकी तरफ का?
15: जी जी इधर भी गर्म है, इधर भी गर्मी है, लगभग 3-4 रुपए गर्मी है।
16: इधर भी वैसे ही हाल है,
15: बारिश होता है तो उतने देर तक ठीक जाता है, उसके बाद फिर गर्मी पड़ जाता है। खैर मौसम है, आने जाना तो लगा जाएगा, किसी के मेहनत क्या कीजिएगा, कभी धूप कभी छांव तो पहना ही पड़ेगा, अपना अपना समय तो सब सब प्रकृति की मांग होता है।
16: अभी तो लास्ट चल रहा है, जून चल रहा है, गर्मी तो बढ़ेगा ही, और
15: ठीक है प्रकृति है तो उसका आना जाना तो लगा रहेगा
16: अभी नहीं, लेकिन गर्मी से बच के रहिए, धूप से बच के रहिए, पानी पीते रहिए,
15: इतना तो जरूरी जी, इतना तो जरूरी करना है, पानी पीना है, प्यास लगे ना लगे थोड़ा थोड़ा पानी तो पीना ही पड़ेगा
16: जी बिल्कुल।
15: धूप से बचना है, कहीं जाना है तो अपना क्या कहिए ना, सावधानी के साथ हम लोग अमृत खाएंगे, और लोग तो फरमाइश आज बजा दिए जिंदगी के राहों में जाने जो गम के मेले, कहने को बोलूंगा।
16: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड?
15: इस सॉन्ग तो पहले आपको आपको रिमी परिवार का संपूर्ण परिवार का सुना देंगे, और दोस्त में हो गया सिखाना तो मोहम्मद साबी जी, हमारे से उत्तम कुमार जी, रामलाल प्रसाद को चुहा लिखी लगा से, अर्जुन कुमार कल मलपुर से, नरेश सोहनी, नसरवीर खान, दीपक दास, जयवान ठाकरे, जुना साहब, धर्मेंद्र यादव, धनराज प्रसाद कुशवाहा, हम मदन राम भैरवगंजी भैरवगंज से, हमारे नाम से जन पहचान तमाम उसके विशेष करके शंकर प्रसाद शंभू जी, पारसनाथ कुशवाहा, पारस शर्मा और रामचंद्र कुमार मुखिया, मोहम्मद तलाक अंसारी है मजवलिया को विशेष करके उनको सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
16: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए।

0: सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कैसे हैं मैम? मैं अहमद अली सरयावाद नंबर एक।
1: जी मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
0: हम कैसे हैं? नाश्ता पानी करके आए हैं।
1: जी हम तो करके आए हैं, आपने किया है?
0: हम तो करके आए हैं मैम, हम तो कर नहीं करके आएंगे तो आपके तरह मेरा भी ड्यूटी है सुबह 9 बजे 5 बजे तक।
1: क्या करते हैं वैसे आप?
0: हम पेंटिंग का काम करते हैं।
1: याद आ गया,
0: काम वो कहीं है तो बताइए, आपका घर रंगना हो तो मौका दीजिए।
1: अभी तो नहीं रंगना है, होगा तो बताऊंगी।
0: जैसे डॉक्टर का फीस माफ हो जाता है वैसे आपका भी माफ हो जाएगा?
1: नहीं ऐसा थोड़ी है, जिसका जो काम है वो कर रहा है और अपने लगन से कर रहा है तो उसको तो देना पड़ेगा ना।
0: और बताइए।
1: मेरा बढ़िया है, आप बताइए।
0: हम लोग रहते हैं
1: जी।
0: आज हमको गाना सुनवाइए, हिंद ले गया वो दिल का जानी, ये रुत बेजान रह गया।
1: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: सुनाना है ना, सबसे पहले आपको सुनाना है, अफसरी को सुनाना है, कमरान रशीद को सुनाना है, राघव जी को सुनाना है, दिलीप भाई को सुनाना है, शबनम है, रानी है, शाहजहाँ है, और जो भी रिमझिम सुन रहे हैं जहाँ से भी सभी को सुनाना है।
1: ओके चलिए फिर ठीक है। और सब बढ़िया?
0: सब बढ़िया है मैम, अपना बताइए, तबीयत ठीक है ना?
1: हाँ तबीयत ठीक है।
0: अगर गर्मी बहुत है मैम, लोगों से बोलिए रेडियो पे बच के रहे, बहुत गर्मी है, बहुत थोड़ा नहीं
1: बच के रहे और पानी पीते रहे, ख्याल रखिए
0: अपना, बिल्कुल अच्छी है, नहीं तो चक्कर खाकर रोड पे गिर जाएंगे आदमी लोग।
1: जहाँ भी जाए एक पानी का बोतल अपने साथ रखे।
0: चलिए मैम सब ठीक है,
1: ठीक है फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे
0: मैम। सुनाने के लिए थैंक यू
1: जी।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
10: Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, खरीदपुर बगहा, पूर्वी चंपारण से।
13: जी जी, क्या हाल है आपका?
12: बहुत अच्छा है, अपना सुनाइए घर परिवार में और रेडियो रंजन पूरा परिवार कैसे है आप लोग?
13: हम सब बढ़िया है
12: जी। जी अच्छा रहिए, उस रहिए, स्वस्थ रहिए, चमना है।
13: तो
12: और मौसम कैसा है उधर?
13: इधर अभी मौसम बहुत गर्म है
12: जी, वैसा ही मौसम इधर भी बना हुआ है, बहुत गर्मी अच्छी बात है लेकर शाम तक। जी
13: तो भोजन हो गया आपका?
12: जी जी हो गया है आपका?
13: मेरा भी हो गया है।
12: जी अच्छा, समय से खाना खाइए, रही पड़ रही है। पानी का सेवन अधिक कीजिए गर्मी में।
13: जी जी बिल्कुल, पानी तो गर्मी में बहुत चाहिए।
12: जी जी, पसीना जितना गिरता है पानी पूर्ति कर लेता है अपना। तो आज गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है नगीना और गाने का बोल है तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मेरा हो गया मैंने वादा किया।
13: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
12: जी सबसे पहले तो आरुण नाना जा रहा हूँ और दो लोग रंजय राजी रामचंद्र मुखिया जी, कंसराज यादव जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धर्मनाथ दुआ जी, राजा बाबरिका और भाई कुमार, शीत कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, आदर्श कुमार, विकास कुमार, बबली प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी और गोपालगंज जी का कैशांतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सुजमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, राम कुमार पांडे जी, दीप राम जी और अभी रेडियो रिंजिंग सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
13: ओके चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: जी धन्यवाद।

0: हेलो। वालेकुम
1: हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
0: सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजनी के कार्यक्रम हेलो माय फ्रेंड।
1: आप सोनी नहीं बोल रही हैं का?
0: नहीं।
1: अच्छा, वो हट गई का?
0: नहीं तो वो भी है।
1: अच्छा ठीक है। तब हम मोहम्मद यूसुफ सिपाया ढाला, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज सैनिक स्कूल है
0: जी,
1: इसी चौराहे से बोल रहा हूँ। दवा का दुकान है हमारा, अपना मेडिकल हॉल। मैं गाना सुनना चाहता हूँ, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं।
0: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और कन्हैया प्रसाद जो गुमनिया के हैं, फौज से रिटायर किए हैं, आपका रेडियो रेडियो रखे हैं, बराबर सुनते हैं, उनको भी सुनवाना चाहता हूँ। ये तो 15 बार फोन लगाए हैं, तब लगा है जाके
0: जी,
1: एक बार रिंग हुआ मारा पूछा ही नहीं।
0: अच्छा,
1: सुनवा दीजिएगा।
0: बिल्कुल, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे। मेरा नाम भारती है।
1: भारती?
0: हाँ।
1: सोनी जी नहीं आ रही है, अब क्या करते हो?
0: आती है, रोज आती है।
1: हाँ, तो वही उन्हीं से बात होता था पहले। तो आपसे पहली बार हमको बात हो रहा है। हम बराबर सुन करते हैं आपके।
0: जी,
1: हम आपके रेगुलर श्रोता हैं।
0: आप ठीक है ना?
1: हाँ हम ठीक है, दुकाने पर है, दवाई की दुकान है।
0: ठीक है, फिर गाना प्ले करती हूँ।
1: ठीक है, ठीक, धन्यवाद
0: जी। सुनते रहे रेडियो 94.4 FM।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
1: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9947434468 पे।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
11: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
11: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
13: कॉल करे 8784-18744।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
14: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
15: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
16: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो,
18: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम तो इसमें। नमस्ते,
17: क्या हो रहा है?
18: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। आप बताइए क्या कर रहे हैं?
17: फोन तो लगाते लगाते हम थक गए हैं आज, बहुत ज्यादा फोन लगाए हैं
18: जी। कॉल आते रह रहा है ना, इसीलिए थोड़ा। और सब बढ़िया है?
17: हमारा तो बढ़िया है, अपना बताइए।
19: नाम भी पूछ लीजिए करिए, नाम पूछे जाए।
18: रवि नाम है आपका?
17: हाँ, पहचान गए क्या? और सब बताइए।
18: मेरा बढ़िया है, क्या हो रहा है अभी?
17: अभी तो हम सोए हैं।
18: हाँ चलिए बढ़िया है, मौसम भी खराब है, घर में रहिए, आराम कीजिए और गाइए। कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
17: निकेश तिवारी का प्रेम के रोग।
18: और ये किसी को डेडिकेटेड भी है?
17: पहले नंबर आपको और सोनी मैम को और जीजा को और बहुत सारे हैं सुनने वाले
18: जी। ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत रेडियो रेंजर 90.4 FM में।
1: जी मैम धन्यवाद। जी मैम मेरा नाम सोनू वर्मा है, बेलाव जौनपुर से बात कर रहा हूँ मैं।
0: अच्छा क्या हाल है आपका?
1: सब बढ़िया है मैम, फिर यही गर्मी ज्यादा पड़ रही है।
0: हाँ इधर भी गर्मी बहुत सी ज्यादा है।
1: काम ही है मेरा, वैसे मैं मजदूरी वाला काम करता हूँ मैं।
0: धूप तो बहुत लगती होगी।
1: हाँ धूप तो बहुत लगती।
0: कोई नहीं, फिर भी धूप से बच के रहिएगा
1: जी।
0: और पानी
1: सुबह ही निकल जाते हैं।
0: पानी सब पीते रहिएगा।
1: मैम मुझे एक गाना सुनना है।
0: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है?
1: कसूर मूवी का है। वो है ना मोहब्बत हो ना जाए।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: जी मैम हमारे रेडियो दोस्त हैं आरजे सागर जी और उदिता मैम हैं
0: जी,
1: जो यही सब हैं मतलब, और ऋषिकेश पंडित जी हैं।
0: ओके गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैम धन्यवाद।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
7: प्रसाद क्लिनिक
8: स्त्री रोग ल्यूकेरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी थनैली चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: रमजान बनारस से।
11: क्या हाल है यार?
12: बढ़िया। कैसा मौसम है?
11: मौसम इधर धूप निकला हुआ है,
12: गर्म बहुत।
11: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है,
12: काम भी कम हो रहा है।
11: उधर का मौसम कैसा है?
12: धूप निकला हुआ है, गर्म तेज।
11: तो और सब बढ़िया है ना?
12: यहाँ सब बढ़िया है, सुनवा दीजिए।
11: बताइए क्या फरमाइश है?
12: गोविंदा का मूवी है दो आंखें बारह हाथ।
11: और सॉन्ग कौन था?
12: जो भी देखे आपको वो देखता रह जाए।
11: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहते हैं?
12: जी हम रेडियो रिंगिंग के श्रोता सभी को, हम भी सुनेंगे और अपने साथी लोग के साथ सुनेंगे।
11: जी चलिए गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई टॉयस में।
0: जी पचकड़ा से भोला जी बोलते नहीं।
1: क्या हाल है आपका?
0: बहुत अच्छा।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: खाना खाकर आराम करना है, दूसरा क्या होगा।
1: चलिए बढ़िया है। तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम तो थोड़ा बदलाव बना हुआ है, बादल थोड़ा थोड़ा है, हवा चल रहा है।
1: चलिए बढ़िया है। और सब ठीक है?
0: गोपालगंज का
1: इधर तो अभी गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है, हवा नहीं चल रहा है।
1: चल रहा है, हवा भी है, लेकिन धूप इतना तेज है कि हवा कोई काम का नहीं।
0: नहीं धूप भी यहाँ पे थोड़ा कम है, बादल थोड़ा थोड़ा है, हवा चल रही है पूर्वा का।
1: जी
0: पसीना नहीं हो रहा है, ठंडी है थोड़ा बहुत, मैंने ठंडा महसूस है।
1: बढ़िया है फिर
0: जी।
1: और सब बढ़िया है ना?
0: हाँ हाँ सब बढ़िया है, अपना बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: सबसे अच्छा सभी से स्वस्थ रहे तो उससे अच्छा क्या है।
1: तो
0: गाना सुना दे।
1: आज क्या फरमाइश है आपकी?
0: आज फरमाइश बाबके खुलवाए कहीं जो हवे धरा मोह अलग अलग बा। यह गाना सुनाए।
1: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहते हैं?
0: हाँ रेडियो का पूरा सुनने वाला चांस होता है सुनो।
1: अच्छा चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, एमडी फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 से 7 तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
11: जी नमस्ते, बाल सुंदरपुर।
10: नमस्ते, क्या हाल है आपका?
11: ठीक है, अपन बताइए।
10: मेरा भी बढ़िया है।
11: गाना सुना दो ना, ईमान डोल जाएगी।
10: जी, और ये सॉन्ग किस डेडिकेटेड? ओके, तो और सब बढ़िया है ना?
11: हाँ, सब बढ़िया है।
10: उधर का मौसम?
11: हवा चल रहा है।
10: अच्छा, बढ़िया है।
11: जी जी,
10: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
11: जी नमस्ते।
10: नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम, कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है जी। एक गाना सुनना है।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम पप्पू ठाकुर है, मैं आराम ताकुर।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा

0: स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: Now pick your phone up.
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो, सलाम वालेकुम मैडम।
5: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
4: कैसे हैं मैडम?
5: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
4: बस अल्लाह करे कैसे, और बहुत दिनों के बाद कॉल लगा है, लगभग 5-6 महीना हो गया बात करने में।
5: अच्छा,
4: आप सोनी मैडम बोल रहे क्या?
5: नहीं, भारती बोल रही हूँ।
4: कब आए हैं इधर?
5: जी मैं तो यहीं पे थी। एक बार अपना नाम बता दें।
4: मेरा नाम हो गया मोहम्मद अलाउद्दीन।
5: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
4: सब ठीक है मैडम, मैं बताइए।
5: मेरा भी बढ़िया है।
4: अच्छी रहना चाहिए। लगभग 5-6 महीने बात हुई थी उसमें सोनी मैडम से, लगभग जनवरी महीने में बात हुई थी। तो नाश्ता पानी हो गया मैडम?
5: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
4: जी मैडम हो गया।
5: बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
4: एक सॉन्ग है मैडम, अल्लाह रखा का, परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, यही वाला सॉन्ग।
5: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहते हैं?
4: हाँ, आप है सबसे पहले और जितने भी सुनने वाले हैं।
5: ओके,
4: ये सॉन्ग फिर कब चलेगा मैडम?
5: ये सॉन्ग कल बजेगा,
4: कल शाम 5 बजे से।
5: जी,
4: तो ये सॉन्ग पूरी सुनवाएगा मैडम, जितने पूरी सॉन्ग अच्छा रहेगा।
5: ओके,
4: पूरी सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है मैडम, मजा भी आता है।
5: जी
4: जी ठीक है मैडम, सुनवाइएगा।
5: ओके, गाना प्ले करती हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM।
4: ठीक है, ओके मैडम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगन के कार्यक्रम हेल्प माय चॉइस में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, क्या हाल है आपका?
0: ठीक है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: भी नहीं,
1: भोजन हो गया?
0: हो गया।
1: अपना नाम बता दीजिएगा, सॉन्ग बता दीजिए, कौन सा सॉन्ग सुनना है आप?
0: करिए करिए कोई भी गाना बजा दीजिए।
1: नहीं,
0: भोजपुरी में
1: जी पसंद तो आपकी होनी चाहिए क्योंकि कॉल आपने किया है।
0: हैंडसम हीरो वाला
1: भोजपुरी सॉन्ग है? ओके, चलिए फिर गाना। और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ,
1: बता दीजिए ना।
0: रेडियो रंजन।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: श्रोता लोगिन नमस्कार, रवा सभी सुनत बानी आपन बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गल बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने के आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ये बिरहा।

0: बाबूजी रउआ सब बहुत गाना कांड के रूप में सुनले बानी हमरा आवाज में। आजवन रउआ सब हमके दुलार प्यार देत बानी, हमार कैसेट कीन के बाजार से, सीडी कीन के बाजार से देखत बानी, सुनत बानी, एक खातिर हम ओम प्रकाश सिंह यादव रउआ सबके बहुत बहुत आभारी बानी। ई कैसेट हम चंदा कंपनी में भेजत बानी भाई हमार साथी प्रकाश जी के सौजन्य से, इन्हीं के द्वारा ई कैसेट होखत बा। और तमाम कैसेट रउआ सब सुनीला करुण रस के, जेवना करुण रस खातिर हमके रउआ सब उपाधि देले बानी, ये खातिर हम बहुत बहुत रउआ सब के आभारी बानी। और ई गाना एक बार प्रेम से, दिमाग से, मिजाज से सुनी, कतनों पत्थर के करेजा हुई इंसान के, लेकिन अगर शांति बना के मिजाज से उना गाना के सुनब तो एक बार बाबूजी कलेजा पसीज जाई, रूह कांप जाई। आप सोच भी नहीं की सकत कि आज के दुनिया में भी ऐसा इंसान बाणन। आखिर कहानी कैसन बा, बड़ी अच्छी बात कवि जी भूमिका के लाइन में लिखलन हम। का लिखलन?
1: कि जश्न में जिंदगी है जहर बन गई,

ओय अपना पराया हुआ, बीज नफरत का दिल में वो क्यों बो रहा, अश्क आंखों से अपना बहाता कोई

एक लाइन पर ही गाना का भाव दिहल गई। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते। अरे इश्क तो बूढ़े भी करते हैं, लेकिन कोई शक नहीं करते। यही लाइन पर कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन, का लिखलन है

हमारे विरहा के शुरुआत हो गई भैया मिजाज से तनियवनी कहानी के सुनी देखी विरहा तो बहुत आप लोग सुनी ला आ तमाम तरह के हम विरहा गौली लेकिन इहो एगो अजीब कहानी हमके मिलल बा नजम के लाइन में बतावल गई है तरजबा हमें तो लूट लिया आके हुस्न वालों ने हमें तो लूट लिया आके हुस्न वालों ने गोरे गोरे गालों

सुधा समझावे अब जी अब नाही ये सैया, सुधा समझावे अब जी अब नाही ये सैया, करिहा बियाह जन

0: तनी बात समझ लो बाबू, कहानी एकदम साफ साफ समझ में चली आई।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
1: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
7: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
8: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
7: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
8: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
8: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
0: हमरा बिहार में अगर हुआ सब गई लोग, एक बहुत छोट मोट जिला पड़ेला भागलपुर। आ भागलपुर में एक छोटे तपे तपाया गांव, जेवनी गांव का नाम सहवा नूरपुर। वो सहवा नूरपुर में एक रहलन जिनका नाम बतावल गई बाबूजी मोतीलाल। भगवान कोनो चीज का कमी नहीं खन देले, धन दौलत सब कुछ भरल बाटे घर में। पति का नाम मोतीलाल, उनका पत्नी का नाम सुधा बतावल गई। ओ परिवार में भगवान दुईठे बेटा भी देले हुए। दोनों लड़कन के लेके मोतीलाल चैन से सुख से जिंदगी बितावत हुए। बड़का लड़का का नाम अनोज बतावल गई और छोटका लड़का का नाम सरोज बतावल गई। अनोज सरोज के लेके मोतीलाल अपन जिंदगी का परवरिश करत हुन। अचानक यही में उनका घर में, यही समय बीतत बा, यही समय बीतला में उनका परिवार में घटना घटल बा। उनकर दुलही सुधा जवन बड़ी बीमार पड़ गई, और जब सुधा बीमार पड़ गई, 2 महीना 4 महीना 5 महीना दावा दारू मोतीलाल बहुत किए, हर डॉक्टरों से दिखाए, लेकिन भगवान की ऐसी माया बाबू, वो सुधा अच्छा नहीं हो पाई, कोई दावा दारू काम नहीं किया। अंजाम ये निकला कि वो सुधा मौत के कगार पर खड़ी हो गई। मौत आकर के दरवाजे पर दस्तखत देने लगा, और जब समझ गई सुधा कि अब मैं नहीं बचूंगी, तो बाबू एक दिन मोतीलाल के बुला के दोनों लड़का अनोज आ सरोज पढ़े गए हुवन, अपना पति के मोतीलाल के बुला के हाथ जोड़ के मेहरारू के जात कलश की देखी सैया। शादी भइल, ब्याह भइल, भगवान दूठे लैका दिहलन, लेकिन अब हम जाना तब बचब ना, लेकिन एक ही हमसे वादा करी जिंदगी में रउआ से कुछ मंगली ना, हम मर जाए लेकिन हमारा मर गिला के बाद रउआ दूसर शादी ब्याह मत करब, न तो हमार लैका टूअर हो जिहन, हमार लैका के घर में लैकन के तकलीफ होके लागी अगर मैं भा महतारी आई। तो मोतीलाल वादा कह लेलन कि ना सुधा ऐसन मत कहा, हम दूसर ब्याह ना करब, भगवान हमके दूठे लैका देले हूँ। लेकिन देखें बाबू, आखिरकार यही कह करके बेचारी सुधा मर गई। दोनों बच्चे स्कूल से आए हैं, अनोज और सरोज, दोनों लैका स्कूल से अलन है, लैकन के मतारी तर बैठाई के आ मोतीलाल कहलन कि बेटा तनी माई का देखा लोग, हम जात पानी डॉक्टर साहब के लिए आवे, तारा माई के हालत सीरियस होखल जात बा। ऊ चल गए डॉक्टर के लिए आवे, आयोर दोनों लड़का माई के यहाँ बैठल बाड़न, लेकिन तब तक अचानक यही बीच में सुधा ये दुनिया के छोड़ के चल दिए, लड़कन के मतारी ये दुनिया के छोड़ के चल दिया। आज जब छोड़ के चल दिए दोनों लड़का वही माई के लाश पर गिर के रोत हूँ। कहा कैसे रोत हूँ बाबू?

इतना तरज बात, लेकिन हमारे गाना के भाव स्थल पर गौर करी हम मतारी दुनिया के छोड़ के चल देवे, लेकिन दोनों छोटे छोटे लड़का माई के लाश पकड़ी के रुवत हूँ। ए माई तू काहे नहीं खूब बोलत, माई अभी तो बोलत रलुआ काहे नहीं खूब बोलत। जब मतारी कुछ माई के मुँह से आवाज नहीं निकलत तो बड़का भैया रोके एक बात कहले बा, का कहले बा बाबू? इहे रोवत बा आ कहत बा,

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में केंद्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, एनडीए के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में आई 1 सीट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और बिहार में मॉनसून नीति दस्तक, किशनगंज के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल थे। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। द्विवार्षिक चुनाव के तहत 9 और 1 सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद इन सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। सभी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: 10 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए के खाते में 9 जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट आई है। भाजपा से भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को जीत मिली है। जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद विजयी हुए हैं। ललन प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट के लिए उम्मीदवार थे। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को जीत मिली है। महागठबंधन की ओर से 1 सीट पर राजद के सुनील कुमार सिंह विजयी हुए हैं। निधिश्री, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि वे बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे।
2: पिताजी की जो नीतियां रही हैं, उनकी जो विचारधारा रही है विकास को लेके बिहार का, उसको मैं जारी रखने की कोशिश करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि जिस सदन में पिताजी बैठे उसमें मैं बैठूंगा और जो भी बिहार के लिए, समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए जो भी उससे हो सकेगा मैं करूंगा। जो भी पिताजी के बिहार को समृद्ध बनाने का सपना उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा।
0: राजद के नवनिर्वाचित विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि वे पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
3: मैं पुनः आज वादा करता हूं कि जिस विश्वास के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे सदन में भेजा है उसमें 100% खरा उतरने का काम करूंगा। मुद्दा चाहे किसानों का हो, मुद्दा चाहे बेरोजगारों का हो, मुद्दा चाहे अल्पसंख्यकों का हो, कभी भी राष्ट्रीय जनता दल का झंडा सदन में झुकने नहीं दूंगा।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले 1000 दिनों में मास्टर प्लान बनाकर आकाशवाणी और दूरदर्शन का कायाकल्प किया जाएगा।
4: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के कोचिंग, निजी ट्यूशन और व्यावसायिक संस्थानों में काम करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आड़ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कठोर और अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए आज से सभी अंचलों में विशेष अभियान की शुरुआत की है। 17 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय सचिवों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का

विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से 18,894 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस राशि से आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पटना के डुमरी में 100 एकड़ में खेल सिटी का निर्माण किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आज विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरवल, मधेपुरा और किशनगंज जिले में 15 जून से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो जाएगा। साथ ही सिवान, मुंगेर और जमुई में फुटबॉल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। बैठक में BCCI द्वारा चयनित बिहार के खिलाड़ियों को मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत शामिल करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार और मधुबनी जिले में पहुंच चुका है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचा है। विभाग ने कहा है कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूरे राज्य में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून के प्रभाव से किशनगंज जिले में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। जिले के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है।
1: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। सारण एवं सिवान जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में मधेपुरा जिले के खापुर पंचायत के परेल गांव में एक दंपति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दंपति मक्का फसल की तैयारी के लिए खेत में गए थे और उसी दौरान यह घटना हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देखभाल और घर के प्रबंधन सहित घरेलू काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष कुमार के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके हाजीपुर के बागमली स्थित आवास और नगर परिषद कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान लाखों रूपये मूल्य के आभूषण, आलिशान घर, संपत्ति के कागजात और वाहन बरामद किए गए। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत एनटीपीसी पार्ट में 48 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रारंभ

हो गया है। इंडक्शन कार्यक्रम में एनटीपीसी बाढ़ के कार्यकारी निदेशक सी सत्यराम कृष्णा ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्हें सीखने और पेशेवर विकास के इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष पवन रावत ने पटना के बोरिंग रोड में मेन होल की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत और एक अन्य के बीमार होने के मामले में राज्य सरकार से 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दौड़ के दौरान 5 प्रशिक्षु जवान भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गए। इनमें से एक प्रशिक्षु सिपाही श्रीराम कुमार की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत कठरंग गांव में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला से फेसबुक पर हथियार संग फोटो वायरल करने के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देशी पिस्तौल भी बरामद किया गया। बक्सर जिले के डुमरांव और राजपुर प्रखंड में विशेष धावा दल ने छापेमारी अभियान चलाकर 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। मधुबनी जिले के जयनगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 अवैध लॉटरी कारोबारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शेखपुरा के एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत 25 लोगों के गुमशुदा मोबाइल उन्हें सौंपे। मुंगेर के किला परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में आज से 4 दिवसीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। मेले में विभिन्न प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में केंद्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। एनडीए के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में आई 1 सीट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, किशनगंज के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

बड़का भैयावा छोटका भैयावा के गोदी में लेके रोवत बा, माई क्लास पकड़ले बा कि माई स्कूल से आवत चले जा तो पहले दौड़ के पानी देत रहलू हा, खाना देत रहलू हा। अब ए घर में के बा हमनी के माई के पूछे वाला बा, अब ए घर में से तू निकल गईलू, अब बाबूजी हमनी के का करी हन। बाबूजी गइलन दवाई ले आवे। माई एक बेर बोल दा, लेकिन माई रहस तब न बोलस बाबू, माई ते दुनिया के छोड़ के चल गईली। आखिरकार थोड़ी ही देर में बाबूजी ओ लैकन के बाबू अइलन हन। आ लैकन के जब बाबू अइलन, मोतीलाल जी देखलन अपने औरत के लाश के रूप में, छाती पीट के औरत के लाश पर गिर गेलन, रोवे लगलन। लेकिन अब क्या पछतायो जब चिड़िया चुन गई खेत, कहले का मतलब कि अब रोले धोले से काबा जोन होके के तवन तो हो गई। गांव घर के लोग जुटलन हा। आखिर मोतीलाल अपने पत्नी का गांव घर के मदद लेके, सहायता लेके अंतिम दाह संस्कार कैलन। आ जब दाह संस्कार कैलन तो एकरे आगे भइल का बाबू।

0: गीत से सुंदर हमारे गाना का भाव दिहल गई। मेहरारू के अंतिम संस्कार कई के मोतीलाल घरे ऐलन, हितई नतई के सब जुटल बा। केहू समझावे लगल गांव घर के लोग, हितई नतई के लोग समझावे लगलन कि अरे मोतीलाल भैया वही तार जिंदगी बड़ी लम्हर बा, भगवान दूठे लैका देले हुए काम करा कि आपन तू एक थे दूसर ब्याह कैला, कम से कम मेहरारू आई तो दोनों लैकन के खियाई पियाई। मोतीलाल कहलन कि ना, हम मेहरारू से वादा कैले रही कि ब्याह ना करब, लेकिन बाबू देखें लोगन के हितई नतई के दबाव पड़ला पर आखिरकार मोतीलाल झुक गइलन आ कैलन है का
1: भैली सगाई आईली लुगा।

आखिरकार मोतीलाल झुक गईलन समाज के सामने, हित नाता के सामने, दूसर ब्याह कैल हलन, नई मेहरारू घर में आई, सुहाग रात बितौलन। आ जब सुहाग रात बितौलन तो कवि जी के लिखे के पड़ल, हाँसी खुशी में बीत।

0: आखिर समय बीते लगल, एक महीना बीतल, दुई महीना बीतल, चार महीना बीतल, छह महीना बीतल, दस महीना बीतल, साल भर बीतले का देरी भइल कि साल भर के अंदर बाबूजी मैभा महतारी अपन मैभा वाली करिश्मा देखावे शुरू कइलस।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैला से का फायदा।

0: गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
5: दोनों लइकन पर अत्याचार ढाहे शुरू कर दी ओ मैं भा महतारी। आज मैं भा महतारी अत्याचार ढारे शुरू कर दिहलस, अपना मोह जाल में मोतीलाल के फंसा लिहलस। दोनों लइका असहाय हुवन, माई बचपने में छोड़ के मर गई, बाबू पराया बन गईलन। आज बाबूजी देखे मोतीलाल के भी धीरे धीरे मानसिकता बदले लगल। केनियो से आवे कुछ लहरा लगा दे दूसर की मेहरारू। दोनों लड़कन के मोतीलाल मारे दौड़ जास। बड़का भैया एक दिन अपने छोटका भैया के लेके सुतल बा बरंडा में, आगे ओसारा में सुतल बा भैया घर में। मोतीलाल अपना नौकी मेहरारू के संगे सुतल हूं। ओ समय नौकी मेहरारू रात के टाइम में अपना पति मोतीलाल से एगो बात कहले बे। का कहले बे भैया? अपने पति के मोतीलाल के मोह माया में फंसा के आइए समझावत बे कि देखा हो एक काम करा। हम ना जानत रहली कि तहरा दूगो लड़का हूं, न तो हम तो से ब्याह ना कैले रहती। अगर हमके पहले पता होइत कि तहार दू छे लड़का हूं, तो हम तो से ब्याह ना कैले होती। और ये दोनों लड़का अगर घर में रहियन तो हम ना रहब। मोतीलाल पहले तो कुछ समझावे का प्रयास कैलन, लेकिन मोह माया में वो नवकी मेहरारू के पूरा जगड़ चुकल रहलन। आखिरकार कहलन कि तब आगे का रास्ता बनी कैसे? नौ की मेहरारू समझौलस की देखा एक काम करा कि ये दोनों लड़कन के घर से निकाल दा। ई घर में रहियन तो हम न रहब, अगर हम रहब तो ई दोनों लड़का न रहियन। ई बतिया बाबूजी बड़का भैया सुनत बा, छोटका भैया के लेके सुतल बा, लेकिन नींद न आवत बा, रही रही के ओकर मुअल माई याद आवत बे। आज ई बात सुन के ओही राती के उ लड़का सोच गई कि माई या बाबू के मानसिकता बहुत खराब हो गई बा, ऐसे अब छोटका भाई के लेके हमें घर में ना रहब। ओही रात के बड़का भैया अपने छोटका भैया के जगावत बा। आ जगा के एगो बात कहले बा। का कहले बा? उहे बड़का भैया रो के कहले बा कि भैया छोटका भैया के जगावत बा।

अरे छोड़ी भैले साथा में भावाना वा हो ना बबुआ मारल जाई है हम नीके जानावा हो ना। बड़का भैया छोटका भैया के वही राती जगा के बाबूजी ठीक 12 बज रहा है रात को। रात को 12 बजे अपने छोटे भाई को लेकर के घर से निकला है और गांव छोड़ करके चल दिया। आप लोग देखे भी होंगे, अगर भाई गए होंगे वहां भागलपुर जिला में जंगली जगह है, जंगल का रास्ता पकड़ करके जा रहा है, रात के वक्त है, छोटे भाई को लेकर के भाग रहा है कि गांव से हम भाग करके कहीं दूर चले जाऊं, जा करके भीख मांग के भाई के हम बचा ले, अपन जिंदगी का परवरिश कर ले, लेकिन परिवार में घर में अब ना रह, माई नहीं खे, अब बाबू भी पराया बन गिलन। वही जंगल का रास्ता पकड़ के जाता, आज जब जंगल में घुसल बा दोनों भाई घुसलन बाबू, जंगली जानवर आवाज कैलन, अचानक दोनों भाई वहीं से भगलन।

हाँ, अब भगलन तो संजोग देखे बाबू, दोनों भाई दूर भगलन, एक भाई पूरब की ओर भगा, एक भाई पश्चिम की ओर भगा, दोनों भाई दो तरफ भगे, दोनों भाई का साथ छूट गया। आज भैया दोनों भाई का साथ छूट गई तो एगो भैया तो भागत भागत कुछ दूर जंगल में पहुंचल बा, वहां बाबू कुछ गुंडों से उसकी मुलाकात हुई है, पकड़ लिए गुंडे, अपहरण करता जो कि बच्चों को अपहरण करते हैं, पकड़ लिए उन्हीं लोगों के गुट, मिला है उस छोटा सा बालक से, और जब मिलल बा तो उ पकड़लन छोटका भैयावा के, छोटका भैयावा के पकड़ के कुल पूछलन हम, तो आपन पूरी शुरू से लेके अंत तक छोट भाई कहानी बतौलस कि भैया हमन का किस्मत के मारल बानी जा, हमार भैया भी हमरे संगे हुअन लेकिन केने गइलन हमके रात में समझ में ना आवत बा, माई मर गई बाबू पराया बन गेलन, दूसर माई आई उ माई हमनी के मारल चाहत बे, यही से हम जान बचावे खातिर हमनी के दोनों भाई घर छोड़ के भागल बानी जा। समझ गई वो गुंडे सब समझ गए कि इस बच्चा से कुछ मिलने वाला नहीं है, आखिर वो गुंडे उस बच्चा को बाबूजी दो तीन चार पांच रोज के बाद पटना शहर में लाए और हीरा लाल सेठ के हाथों बेच दिए। जब बेच दी हलन वो समय भैल का बाबूजी छोटका भाई के तो बेच दी हलन गुंडा सब मिलके, लेकिन बड़का भैयावा वही जंगल में दर-दर के भटकत बा, अब भटक के रोत बा, रो के अपने छोटका भाई को खोजत बा, रात बीतल बा, दिन में रोत बा और रो रो अपने भैयावा को खोजत बा। यहाँ वे एक लाइन तरज बा, का तरज का लाइन बा,

0: बहुत प्रयास कैलस बड़का भैया अपने छोट भाई के खोजे खातिर, लेकिन छोट भाई ना मिलल। छोट भाई के तो अपहरणकर्ता ले जाके हीरालाल सेठ के यहाँ पटना शहर में बेच दिहलन। लेकिन देखें किस्मत का मारल, आखिर भटकत भटकत भटकत ये बड़ा भाई भी उसी पटना शहर में चला गया। जा करके कुछ दिन तक तो भीख मांग करके गुजारा किया, लेकिन बाबू कुछ दिन बीतने के बाद वहीं पर स्टेशन के बगल में हनुमान जी का मंदिर है और उस मंदिर पर फूल माला बेचने लगा। फूल माला बेच के जिंदगी के परवरिश करे लगलन। ओहू से ना भइल दो चार पांच महीना और गुजरल तो वही पटना रेलवे स्टेशन पर जाके वो बड़ा भाई कूली का काम करने लगा। कूली के काम करत हूँ, लेकिन देखे धीरे धीरे समय बीतत बा। जब धीरे धीरे ठीक बाबूजी 7-8 वर्ष और गुजरा तो एक और घटना घटी है। आज जो हीरालाल सेठ जवन छोटका भैयावा के अपहरणकर्ता से किनले हुन, आज हीरालाल सेठ बाबूजी भगवान का महिमा हीरालाल सेठ कह के हु बेटा बेटी ना बा। ओ बेटा के अपना बेटा नियन जानत हुन, अपना परिवार के एगो सदस्य बना लिहलन, अपन औलाद माने लगलन। ओ बेटवा के नावे धन दौलत जजात पूरा संपत्ति का मालिक ओ बेटवा के बना दिहलन। सब जाने लगल कि ई हीरालाल सेठ का लड़का है।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: लेकिन देखें समय आगे बढ़ल बा, और समय जब आगे बढ़ल तो कहानी का मोड़ भी आगे। कवि जी लिखलन है का

तनी बात समझ ली हवा का कहानी हमें छोड़ दा। दोनों लड़का एगो लड़का पटना रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करत बा, एगो लड़का हीरा लाल सेठ के लड़का बन गई बा। लेकिन अब तनी चला वो लड़कन के गांव में, मोतीलाल के वो लड़कन के बाप का खिस्सा सुना। एहवर मोतीलाल नौकी मेहरारू के लेके चानी काटत हुन, लेकिन बाबू उमरिये से सब कुछ निकला गेला। इनकर शरीर अब धीरे धीरे पुरान होखल बा, ओकर अभी चढ़ती जवानी बा। आखिरकार समय धीरे धीरे बीतल बा, आ जब समय धीरे धीरे बीतल बा तो नौकी मेहरारू के भी एगो लड़का भइल बा। कवि जी भाव लिखलन है का,

जैसन करनी वैसने भरनी। मोतीलाल के नौकी मेहरारू बगलवे में एक ठे रहलन जवाहिर यादव, वही जवाहिर यादव से नैन लड़ावे लगल। अंजाम निकलल कि अब अपना के छोड़ के दूसरा पर पड़ गई। अब वो जवाहिर के जन्मावल वो मेहरारू से वो लड़का भी हो गई। गांव जवार देखल सब ठट्ठा उड़ावे मजाक करे कि ला सर दूगो सोना ने लैकन के छोड़ के नया मेहरारू खातिर ब्याह कैल। अब सपरत नहीं के तो दूसरा के ना जाई तो तुहरा के रही के का करी। एकदम हु बहु नाक मुंह कान हाथ गोड़ वही जवाहिरे के पड़ गई। जवन लैकवा जवन पैदा भई गांव जवार देख के ठाठा मारत बा। आज ही बेचारू अपना कर्म पर झकत हुन, मोतीलाल करम पर झकत हुन की जिंदगी में बहुत बड़ी यार गलती कैली। आई जिंदगी के सबसे बड़ भूल होला बाबू, बूढ़ मरद अगर कोनो नौजवान मेहरारू से ब्याह कर ले तो जिंदगी का सबसे बड़ भूल है। धन या धर्म दोनों जाला। अगर बूढ़ मरद कोनो नया मेहरारू से ब्याह कर ले, नेक्सन भाई याद कर लिया तू हमारे रिकॉर्डिंग कर तड़ तो इतना याद कर लिया कि कब ही ब्याह शादी जवानी में कल जला। आ जैसन उम्र रहला वैसने उम्र के लड़की खोज के करे के चाहे। न कि तुहार टेस्ट फार्मर फ्यूज हो गई बा और टेस्ट फार्मर में तीनों फेज में लाइन आवे तो बतावो उ क दिन चली। उ चले मान के ना बा। गांव जवार हंसता इला सर उ दूगो सोना ने लैकन के छोड़ के नया मेहरारू के चक्कर में पड़ के ब्याह कैल। तब अब कहा झकतल मोतीलाल अपना कर्म पर झकत उनकी बड़ा बड़ियार गलती कैली। हम अपना पहली मेहरारू के कहल ना कैली। पहली मेहरारू मना कैले रहे कि ब्याह मत करिय, लेकिन हम ब्याह कह के झकत बानी पता ना हमार दोनों लड़का के ना हालत में हुई है। तब आखिर बात भइल का बाबू जी, कवि जी टेरी के बात दिहलन। ए भैया दीवाना अब बेगाना हो गया, अब दीवाना अब बेगाना हो गया, ऐसा इश्क में अंधा जालिम हुआ जमाना। तया सरा पर पानी फिरा, ए भैया विपत के पहाड़ गिरल, छोड़ी गई ले भरा ला भावना।

आज मोतीलाल सोचत हुन, का सोचत हुन कि मेहर खातिर का ना कईनी, मेहर खातिर का ना कईनी।

काये भगवान काये भगवान कवन ऐसन बिगार कैनी आ कहाँ पाइप चादर।

सहरसा सारा मा गईले ए भैया टेंट हाउस में काम कईले आ कैसे होई बेटा के।

ए बाबू तनी बात समझ ला, मोतीलाल गांव घर के ताना बर्दाश्त ना कर पाओस, एकदम आजीज हो गिलन, सोच गिलन कि गांव में अब रहल हमके दुश्वार बा। गांव छोड़ करके मोतीलाल घर द्वार छोड़ करके चल दिया, अपनी बीबी को घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके, तमाम दोस्तों को छोड़ करके सोच गया कि अब इस गांव में रहना मुश्किल नहीं है, लोग जीने नहीं देंगे, हम अपने गलती के सजा खुद हम भोगत बने। गांव घर छोड़ के चल दिया, घूमत घूमत अपने पेट के तलाश में कि दोनों जन का कैसे भोजन मिली, कहीं कुछ काम करी, मजदूरी करी, घूमत घूमत घूमत घूमत ओ मोतीलाल इसी बिहार के सासाराम में आ गया। और सासाराम के टेंट हाउस जो है बाबू, सासाराम टेंट हाउस, उसी सासाराम टेंट हाउस में काम करने लगा। बारात में तमाम फंक्शन होता था, उसी टेंट हाउस में तो सकतकिया बत्ती ले करके वो जाता था और वहीं पर अपने जो है पेट का पालन करने लगा उसी टेंट हाउस में रह करके। लेकिन देखें मोतीलाल तो इस सासाराम टेंट हाउस में रह लगल, लेकिन एहवर पटना के अंदर जो उनकर छोटका लड़कवा हीरा लाल सेठ के यहाँ बिकल बटे, जेकर नाम सरोज हम बतौली, सरोज के हीरा लाल सेठ अपना बेटा जैसन जाना तान, पूरा धन दौलत का मालिक बनौले हूँ, सब जाने लागल कि सेठ हीरा लाल का लड़का बा। आज वो लड़कवा के शादी तय भइल, आ शादी तय कहवा होता टे।

0: इतना तरज हो हमारे गाना के भाव स्थल पर गौर करियन। आज बाबूजी मोती लाल सोचत हो।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9522384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: कवि जी का लिखे का पढ़ल का

0: आखिरकार एवर हीरालाल सेठ का वह बेटा सरोज, मोतीलाल का बेटा जवन सरोज पटना हीरालाल सेठ के यहाँ बिकल बा। आज 2 जून के एक शादी का दिन निश्चित भइल। वही बिहार के परसथुआ में, परसथुआ के ललन सेठ के यहाँ ओकर बाबूजी शादी तय भइल। परसथुआ के ललन सेठ बाटन वही ललन सेठ के लड़की से ए लड़का सरोज के शादी तय भइल। तो भइल का
1: कि 2 जून के रहे सरोज।

देखा संजोग, बारे भगवान तोहरो लीला गजब हो। आज 2 जून के पटना से बरात लेके हीरालाल सेठ को सरोज बेटवा का परसथुआ अलन। आज जब परसथुआ ललन सेठ के अलन तो जवन टेंट हाउस का व्यवस्था रहे उहे सासाराम टेंट हाउस के व्यवस्था पूरी परसथुआ ओ उनके बारात में ओकरे व्यवस्था रहे। रथ जनरेटर बत्ती सब कुछ वही सासाराम टेंट हाउस का ही व्यवस्था था। सरोज बग्गी पर बैठा है, रथ पर बैठा है और वही सरोज का बाप मोतीलाल बाबूजी आज अपने कपारे पर मरकरी लेके वही रथ के संगे संगे चलत हुआ। देखें संजू अचानक उस लड़के की नजर पड़ी है अपने मोतीलाल बाप के चेहरे पर, सोचने लगा। थोड़े देर तक तो अवाक हुआ कि मेरे पिताजी जैसा आदमी लग रहा है, लेकिन फिर सरोज सोचत बाकी ना हमारे बाबू का कोने चीज का कमी बा कि हमार बाबू ऐसा काम करियन मजदूरी करियन ई नहीं के हो सकत। खैर ब्याह शादी तो हो गई बाबू, दुल्हन ललन की बेटी, ललन सेठ की बेटी आज हीरालाल सेठ की बहू बनकर के पटना में आई है। सरोज की दुल्हन बनकर के सुहाग रात बिताने जाता है ओ सरोज, लेकिन मायूस है। बार बार उस आदमी का चेहरा इसके आंखों के सामने नाच रहा था कि वो मेरे पिता जैसा था, हमारे बाबूजी जैसन, हमारे बाबू जैसन वो आदमी रहल, आखिर के रहल। दुल्हन पूछ बैठी सरोज की कि पति देव आज तो हंसने खेलने की टाइम है, दिन है, आज तो आप सुहाग रात मनाने आए हैं, दो नया दिल एक दिल बनने जा रहा है, फिर इतना आप मायूस क्यों हैं? सरोज शुरू से लेके अंत तक पूरी कहानी बतौलस कि देखा जब हम तोरे गांव में ब्याह करे गई ली, हम ऐसे ऐसे किस्मत का मारल हैं, आज ईजा भले ही हम सुख करत बने लेकिन हम मोतीलाल कलैका हैं आ हमरे बाबू नियन ओ बरात में जौन टेंट हाउस गई रहे ओकरा में मरकरी लेके हमरे बाबू के चेहरा का एक आदमी खड़ा रहे, ओकर चेहरा हमरे आंख पर नाचत बा, सोचत बानी खाली है कि कहीं हमारे बाबू तो ना रहलन। दुल्हन कहती है कि पति देव आपकी खुशी ही मेरी खुशी है, तो जब ऐसा बात बात कोने चीज का कमी बात जाके पता लगा ली सासाराम टेंट हाउस से कि आखिर वो आदमी के रहल, देखे बाबू हुआ क्या। अल्लाह के लाइन में कहा।

0: तनी बात समझ ला। आखिर दो चार पांच रोज बीता है बाबू, सरोज पटना से चल दिया सासाराम। तैयारी किया है सासाराम की चलकर पता लगाऊंगा कि आखिर सासाराम टेंट हाउस में वो आदमी कौन है। ऐलन है सासाराम सवेरे 10 बजे बा पहुंचलन है पटना से अपने निजी गाड़ी से। सासाराम टेंट हाउस में गैलन है सरोज, तब तक उहे बूढ़ा वही आदमी बरात से बाबू टेंट वगैरह आया था सासाराम टेंट हाउस में, अपने सर पर तोषक तकिया ट्रैक्टर से उतार करके घर में रख रहा था। नजर पड़ी है सरोज की। सरोज कहलन की चचा तनी सुनबा, बुढ़ा बेचारा वो आदमी पहुंचा है। कहलन हाथ जोड़ के सरोज की चचा, आखिर तू ए उम्र में ई धंधा ई काम करत बड़ा, तुहार उम्र ई काम करे वाला ना बा, काहे करत बड़ा, का तुहरा बाल बच्चा ना बा, तहार परिवार ना बा। रोने लगा इस बात को सुन करके वो बुढ़ा आदमी और हाथ जोड़ करके सरोज के सामने कहा कि बेटा भगवान हमको सब कुछ दिए थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सारी गलती मेरी है। जवन कैले बानी हुए भोगतानी ये बेटा, हमके भगवान दूदू ठे लड़का देले रहलन। शुरू से लेके अंत तक वो बुढ़ा आदमी बताया कि हम भागलपुर जिला के रहे वाला बानी, हमार नाम मोतीलाल बा, हमके भगवान दू ठे लड़का देले रहलन, मेहरारू मर गई, दूसर ब्याह कैली, उहे घर में हम अपना गोड़ में कुल्हाड़ी मार दी।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
4: और 9097160602।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: पहली औरत का कहलना के लिए जब इतनी बात सुनन हाँ, सरोज सोच गया कि आय हाय, मेरा शक सही ही निकला, यही मेरे पिता मोतीलाल जी हैं। लेकिन सरोज कुछ बताता नहीं है बाबू। सरोज हाथ जोड़ के कहलन कि चचा, ई तुहार काम करे का उम्र नहीं खे, एक काम करा, तू चला हमरे यहाँ, कोनो चीज का कमी नहीं खे, नहिहा खइहा और दोनों बेरा मंदिर बाबू मंदिर में पूजा करिया, इतने ड्यूटी बा, जवन कहबा तवन देव। ले के सरोज पटना में अइलन है, अजब आके अपने दुल्हन की है बतौलन है कि अपने दुल्हन से कि देखो यही मेरे पिताजी हैं और इनका पैर छुओ। जब इतना बात सरोज बोला है वो बुढ़ा अवाक होकर के सोचता है कि अरे ये आदमी तो मुझे काम करने के लिए लाया, लेकिन ये क्या कह रहा है। हाथ जोड़ के सरोज कहलन के हाँ बाबू, हम तुहार उहे बेटवा सरोज हैं। जवन दोनों बेटवन के मोह माया तू विसार दिहला माई के मुआला के बाद, उहे हम बेटा बानी, लेकिन बड़का भैया का पता ना बा, बड़का भैया कहाँ चल गेलन, लेकिन हम उहे तहार सरोज बानी बाबू, तू हमार बाबू हुआ। रोने लगा वो बुढ़ा आदमी, फूट फूट करके रोने लगा मोतीलाल, आ रो के एक बात कहलन, का कहलन,

0: कहला ना मोतीलाल कहलन कि बेटा तहरा कोनो चीज के कमी नहीं के, तू तो सुख से करत सुख से जिया तड़ा, लेकिन हम तोहर बाबू जैसन कैली वैसन पौली, लेकिन एक दिल के आखिरी इच्छा बा बेटा कि तनी वो बड़को बेटा के हमरा पता चल जाए, हमरा बड़को बेटा के सरोज पता लगा देता कि हमार अनुज कैसन बाटे। ए भैया ई बात को सुन करके सरोज पंपलेट छपवाया है, चारों तरफ ऐलान करने लगा अखबार में पेपर में बाबूजी प्रकाशित करवाने लगा, और जा करके एक दिन सवेरे पंपलेट वही पटना स्टेशन रेलवे स्टेशन पर साटत है, तब तक वही जो बड़ा भाई है उसका अनुज अनुज बाबूजी मोटरी लेकर के और कपार पर कुल्ली का काम कर रहा था, कपार पर सामान लेकर के आ रहा है, वही अनुज से सरोज पूछत हूँ कि ये भैया ऐसा ऐसा बात बात नहीं सुनबा, अपना सामान रख करके आया, बोला कि बात क्या है, कहलन कि देखा भैया हम मुसीबत के मारल बानी, एक हमार बड़ भैया हूँ और ऐसा ऐसा बात बात जब शुरू से लेके अंत तक कहानी बतौलन है, अचानक उस कुली के आंखों से आंसू छलक पड़ा, सरोज देखा अवाक हो गया, बोला कि बात क्या है, मेरे बात पर तुम रो रहे हो, कारण क्या है, कहलन कि अरे भैया तू जो भाई का खोजा तड़ो दूसर के हुना बा, बल्कि वो तुम्हार भाई हम ही बने, दोनों भाई गला से गला मिलन हम, आ जब गला से गला मिलन तो ए तनी बाप के दिल में खुशी भइल, ओ मोतीलाल के दिल में तनी खुशी भइल बाबू कि ए तनी खुशी भइल कि उसी पटना रेलवे स्टेशन पर जब दोनों बेटों को मिलता हुआ देखता है मोतीलाल, इतना खुश हुआ कि वो खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, वहीं पर हार्ट अटैक हो जाता है, गिर पड़ा स्टेशन पर, लाख दावा दार हुआ लेकिन मोतीलाल नहीं बच पाया, दोनों बेटा अपने बाप के अर्थी को उठाए उसी पटना श्मशान घाट पर अंतिम दाह संस्कार किए, आ जब दाह संस्कार कैलन हम तो कवि जी अंतिम लाइन में एक बात लिखलन हम
1: कि अरे दिहला बाबूजी के कर जा चुक

छोटका भैयावा सरोज समझावे लगल बड़का भाई के कि भैया अब हम पटना में ऐसन जगह पर बानी तू कूली के काम करब निक ना लगे। वो कलश की ना भैया तोहरे किस्मत में उहे बा और हमार किस्मत में ही बा तो ऐसन काम मत करा। छोटका भाई सरोज कलश की ना हम तोहके अपना आँख से ई कभी ना देखब कि तू कूली के काम करा। कलश की ठीक बा भैया जब ना देखबा तो हम पटना शहर छोड़ के जात बानी। आखिर वही बड़ा भाई जो है दिल में बैराग उत्पन्न हुआ है और वहीं से पटना शहर छोड़ करके दोनों भाई गले से गले मिले हैं और बड़का भैया अनोज पटना शहर से निकला है चला आया यही गोरखपुर में और जा करके गुरु गोरखनाथ के चरणों में जा करके गुरु गोरखनाथ के आश्रम में गिर पड़ा और जा करके वही सारंगी और झोली उठा करके जोगी बन गया। गाने का अंतिम लाइन था अरे इसका मैं अंधा कहे हो तुबा जमाना उमर बिता के लोग खोजा तुबा जनाना इहे रही रवैया लोग लूटी है चिरावा कैसे बोली पर।

0: तो श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रउआ सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए के दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
11: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
10: तो देर मत कीजिए,
11: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
12: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
13: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
14: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
16: The topic for the Governing Council meeting.
17: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
16: To youth, to working life, to old age.
15: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
18: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
15: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में

0: खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है।

0: रहा है।
1: उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञ विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
0: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
13: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
14: क्यों, क्या हुआ है?
13: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
14: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
13: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
15: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
16: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
17: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
18: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, नदी में डूबने से बाप बेटे की मौत, परिजनों में मचा चित्कार। एक ट्रक से पकड़ी गई हजारों लीटर शराब, आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। शराब पीने से मना करने पर नाराज होकर एक व्यक्ति ने खाया सल्फास की गोली। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने अपनाया सख्त रुख। जैव विविधता को लेकर शुरू हुआ किसानों का प्रशिक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव के पास खनुआ नदी में स्नान करने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें एक 6 वर्षीय मासूम की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके पिता लापता हो गए थे। बताया जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में चौमुखा टोला भाठे गाँव के रहने वाले फुलेना सैनी अपने 6 वर्षीय पुत्र के साथ स्नान करने गए थे। उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए दोनों नदी में उतरे, लेकिन काफी देर तक घर वापस नहीं लौटे। जब पति और पुत्र काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो फुलेना सहनी की पत्नी शैला देवी उनकी तलाश में नदी के किनारे पहुंची, जहां उन्हें दोनों के कपड़े और मोबाइल फोन पड़े हुए मिले, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अनहोनी की आशंका से उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, खोजबीन शुरू की गई तो ग्रामीणों ने नदी से मासूम के शव को कई घंटों के मशक्कत के बाद बाहर निकाला और तत्काल विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिता की तलाश भी देर रात तक जारी रही। बताया जा रहा है कि काफी समय बाद फुलेना सहनी के शव को भी पुलिस ने बरामद किया है। दोनों की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया और इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पत्नी ने शराब पीने से मना किया तो एक व्यक्ति ने सल्फास की गोली खा ली। मामला बरौली बाजार का बताया जा रहा है, जहां दक्षिण टोला निवासी 38 वर्षीय रंजीत कुमार अपने घर पर शराब पी रहा था। इसी दौरान इसकी पत्नी ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए शराब पीने से मना किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच रंजीत कुमार ने गुस्से में आकर सल्फास की दो गोलियां खा ली। जहरीले पदार्थ का असर होते उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गया। परिजनों ने आनंद फानंद में उसे सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार स्थिति गंभीर बनी हुई है और लगातार डॉक्टर इसकी निगरानी कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर उचका गांव थाना की पुलिस ने संत मोड़ के पास राज चिमनी ईट भट्टा के नजदीक छापेमारी करते हुए एक डीसीएम ट्रक को पकड़ा। इस गाड़ी के अंदर से 7182 लीटर देशी शराब और 1107 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस ट्रक से कुल 8289 लीटर से भी अधिक देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि इस शराब तस्करी में प्रयुक्त डीसीएम गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम दिनेश शाह, जो उत्तर प्रदेश तरया सुजान के शिवराजपुर चौपटिया गाँव के पटिया शाह का पुत्र है। पुलिस ने गाड़ी के साथ ही इसको गिरफ्तार कर इससे आवश्यक पूछताछ शुरू कर दिया है। साथ ही इतने बड़े शराब के इस कंसाइनमेंट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी पुलिस खंगाल रही है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि सभी प्रखंड अनुसरण एवं मूल्यांकन सहायक सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित पदाधिकारी भी इस बैठक में पहुंचे। बैठक में मई 2026 माह के स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा हुई। इसमें जिला पदाधिकारी ने नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम NCD सहित स्वास्थ्य विभाग की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य है, दोषी पाए जाने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन अस्पतालों की व्यवस्थाओं में कमियां पाई गईं, उन्हें कड़ा फटकार भी लगाया गया। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस पर 2024 में मामला दर्ज था और तभी से यह फरार चल रहा था। पकड़ा गया आरोपी हरिशंकर प्रसाद, पिता स्वर्गीय नगीना प्रसाद, यह बसडीला खास थाना नगर जिला गोपालगंज का निवासी है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिला कृषि कार्यालय स्थित प्रशिक्षण केंद्र में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों और प्रशिक्षणार्थियों ने जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन तथा पर्यावरण संतुलन के महत्व में आवश्यक जानकारी देते हुए उन्हें प्रशिक्षित करना बताया जा रहा है। इधर नगर परिषद के चंद्रवंश गिरी उर्फ टूना गिरी सभागार में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें LED लाइट की कमी को मुद्दा बनाया गया। सभी क्षेत्रों में LED लाइट लगाने के लिए मांग की गई। इसमें सभापति ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के भीतर लाइट लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। शहर की गली मोहल्लों में लगभग 6400 से अधिक LED लाइट लगाने का टेंडर हो चुका है, उसका वर्क ऑर्डर भी बन चुका है। संबंधित एजेंसी को लगाने का कार्य कार्य करना है। शहर को दूधिया रोशनी से रोशन करने की बात कही गई। किसी भी गली मोहल्ला में अंधेरा ना रह सके इसका पूरा ख्याल रखने का आश्वासन दिया गया। बैठक में सभापति ने बताया कि 9 करोड़ रुपए के नाला एवं पथ निर्माण योजनाओं के लिए भी निविदा निकाली जा रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से नगर में जल जमाव की समस्या भी दूर हो जाएगी। इस दौरान बताया जा रहा है कि शहर में कच्ची सड़कों का भी पक्कीकरण किया जाएगा और सौंदर्यीकरण के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा। इसकी भी मंजूरी बैठक में दी गई है। माझागढ़ थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी बीरेश यादव, पिता राजकुमार यादव उर्फ अमित यादव, जो मधु सरिया थाना माझागढ़ जिला गोपालगंज का निवासी है। पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद विधिवत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भोरे थाना की पुलिस ने भी चोरी के एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी मोहम्मद साहबू को गिरफ्तार किया। यह माझागढ़ के सिकमी निवासी नसरुद्दीन शाह का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी तिवारी टोला पहाड़पुर ओवर ब्रिज के नीचे थाना कुचायकोट में छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को 45 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी अबू बकेर अंसारी है, जो रामपुर जीवधर थाना विशंभरपुर का निवासी बताया जा रहा है। इसकी मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बरौली थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी सूरज मांझी पिता पप्पू मांझी और दूसरा छोटन मांझी पिता बिंदा मांझी, ये दोनों फतेहपुर बरौली के निवासी हैं। इनके घर से ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा उत्पाद विभाग की पुलिस ने अमरजीत यादव को भी शराब के साथ पकड़ा है। यह विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सीसवा का रहने वाला है। इसकी भी मोटरसाइकिल से 27 लीटर लगभग शराब पकड़ी गई है। इसको भी आज उत्पाद पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नदी में डूबने से बाप बेटे की मौत, परिजनों में मचा चित्कार। एक ट्रक से पकड़ी गई हजारों लीटर शराब, आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। शराब पीने से मना करने पर नाराज होकर एक व्यक्ति ने खाया सल्फास की गोली। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने अपनाया सख्त रुख। जैव विविधता को लेकर शुरू हुआ किसानों का प्रशिक्षण। स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
19: ठक ठक।
20: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
21: अच्छा मिला ही नहीं।
20: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
21: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
20: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
21: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
22: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
23: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
22: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
24: अब बेटा, बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
25: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
26: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
27: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070655।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेमछिम 94.4 FM पे समय 9:19 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे SMS फरमाइश। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में आपकी हाजिरी लगेगी और साथ ही आपकी फरमाइश भी पूरी होगी। तो आप अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि पुराने गाने की फरमाइश करना है। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें, अपना मैसेज हमारे पास सेंड करने के लिए टाइप करने का। और यहाँ पे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सोनू भाई, 3 दिन से मैं मैसेज कर रहा हूँ और मेरी फरमाइश का गाना नहीं बजा रहे हैं। आज मेरा फरमाइश का गाना बजा दीजिएगा। और मैं परवेश नवादा से बोल रहा हूँ और गाने के फरमाइश करते हैं तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे में मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, और मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है जुदाई जुदाई लंबी जुदाई। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम सोनू भैया, क्या हाल है। तो बिल्कुल बढ़िया है। और मैं मुस्कान गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है याद याद याद बस याद रह जाती है। तो बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि पवन सिंह का, तो कोशिश है आपकी फरमाइश हम प्ले करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं। ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं। ठीक है, मुझे गाना सुनना है भाई, बरसात के दिन आए। तो बिल्कुल बरसात के दिन तो आ ही गए हैं, गाने के फरमाइश से तो आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। सविता चौहान भोज छपरा से जुड़ी हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सोनू भैया कैसे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया है। और नैना शर्मा वृंदावन से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, दाग द फायर मूवी से गाने के फरमाइश करती हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो मुझे सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम नहीं बताए हुए, तो अपना नाम ज़रूर बताएं ताकि आपकी पहचान हो सके और पहचान के साथ साथ आपकी फरमाइश भी पूरी हो पाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, गुड इवनिंग सर, मैं अनीस यादव स्टूडेंट ऑफ KGS इंस्टीट्यूट पटना। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा, और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है, काफ़ी पहले मैसेज पहुंचा दिया गया है, मेरा नाम है और इस मैसेज को पहुंचाने वाले सुनम्थु दत्ता झारखंड से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अब गाने के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और पहले गाने प्ले करते हैं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने ओल्ड इज़ गोल्ड या 90s के गाने की फरमाइश करना है। और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो जी, गुड इवनिंग, आई एम मिथुंजय फ्रॉम पुणे, असिस्टेंट मैनेजर जे एफ रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सॉन्ग रिक्वेस्ट पवन सिंह का कोई भी सॉन्ग। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। एक गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, गाने का बोल दिया गया है पवन सिंह के ही आवाज़ में, याद ही सहारा बा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अस्सलामुअलैकुम, क्या खैरियत है? तो बिल्कुल बढ़िया है। और कहती हैं कि मेरा भी वेलकम कीजिए। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबीना खातू एंड जिसान बाबू फ्रॉम दुलुलिया से आप दोनों बने रहे हमारे साथ। और बादलों ने पूछा किसने याद कर रहे हो, बादलों ने पूछा किसे याद कर रहे हो, हमने मुस्कुरा कर कहा जिसे बारिश पसंद। अगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और मैसेज करती हैं सोनी गोपालगंज से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और मुझे भी आज सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी मानिकपुर से, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, तो आपका भी स्वागत है, फिलहाल आप कौन? आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय सुनो भैया जी, कैसे हैं आप? और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं, मैं रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल रोहित जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश ले करते हैं। और इस गाने का फरमाइश करते हैं दिलीप जी, गाने का बोल देते हैं जुदाई जुदाई। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 94 FM पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
8: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और समय 9:42 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में। आगे कई मैसेज भी हमारे पास पहुंच रहे हैं और कई पहुंचे हुए गाने के फरमाइशों के लिए। और यहाँ पे आज हम फिर से आप सभी के बीच एक थोड़ा सा सुझाव साझा करेंगे सेहत सही लाभ कही के अंतर्गत, और आज हम जानेंगे दस्त यानी डायरिया के बारे में। डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बार बार पतला या पानी जैसा मल त्याग होता है। यह गर्मी के मौसम में दूषित भोजन और गंदे पानी के सेवन से अधिक फैलती है। यदि समय पर उपचार ना किया जाए तो शरीर में पानी और लवणों की कमी, डिहाइड्रेशन हो सकती है। कारण यह है कि दूषित या बासी भोजन खाना, गंदा या संक्रमित पानी पीना, बैक्टीरिया, वायरल या परजीवियों का संक्रमण और भोजन से एलर्जी, स्वच्छता की कमी रहती है तो ये सारी बीमारी हो सकती है। और लक्षण है बार बार पतला मल आना और पेट में दर्द या मरोड़ होना, मछली मतली और उल्टी और कमजोरी, थकान, बुखार आना, अधिक प्यास लगना, शरीर में पानी की कमी होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और उपचार है इसका ORS का घोल का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पिए, हल्का और सुपाच्य भोजन करें जैसे खिचड़ी, दही, चावल, केला आदि, तेलीय और मसालेदार भोजन से बचें, आराम करें। यदि दस्त लंबे समय तक रहे या मल में खून आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसका बचाव के साथ साथ और भी सारे उपाय हैं, हमेशा स्वच्छ और ताज़ा भोजन करें, उबला या शुद्ध पानी पिए, भोजन से पहले और स्वच्छ के बाद हाथ धोए, बासी भोजन का सेवन न करें, आसपास की साफ सफाई बनाए रखें ताकि आपको ऐसे समस्या से जूझना ना पड़े। यदि ऐसी कोई भी गतिविधियां आप सभी के बीच होती है तो आप इसमें थोड़ा सा कोताही ना बरते, आप अपने को ख्याल रखें, ध्यान रखें कि हम स्वस्थ रहें। और यदि आपके साथ साथ अगल बगल आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को ऐसा लक्षण दिखाई देता है या आपकी जानकारी हो तो उससे भी अपना जानकारी साझा करें और उसे सहयोग करें अस्पताल ले जाने में, या अपने द्वारा जो भी हो सके मदद उसे मदद करें। ये सारे रेडियो रिमझिम हर रोज़ एक एक छोटी छोटी जानकारियां साझा करेगा आप सभी से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मैसेज भी पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने के फरमाइश किया गया है पवन सिंह की आवाज़ में, बस याद ही सहारा बा। और पवन सिंह के गाने का फरमाइश दो श्रोतागण की तरफ से पहुंची है। एक श्रोतागण कहे हैं कि कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा, और एक श्रोतागण की फरमाइश में नाम दिया गया है बस याद ही सहारा बा। तो आप दोनों की फरमाइश हम पूरी करेंगे। और पूरी करने से पहले कई मैसेज पहुँचे हुए और मैसेज में लिखा गया है कि जल्दी भाई, तो बिल्कुल जल्दी तो नहीं हो सकता है, एक एक करके ही फरमाइश हम पूरी कर सकते हैं। और सबिता चौहान, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बिल्कुल यही प्यार है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग, मुझे एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना, मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है वेरी नाइस सॉन्ग, मैसेज करते हैं शिव सागर दीवाना जी। और आगे भी मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातून। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और सोनू जी मैं भी जुड़ गई हूं, मुझे भी गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले रेखा पांडे सरिया वार्ड नंबर 5 से, तो बिल्कुल आप भी बन रहे हमारे साथ, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि जब भी कभी मन उदास होता है तेरा चेहरा आसपास होता है, तू दूर है तो क्या तेरे करीब होने का मुझे हर घड़ी एहसास होता है। सोना भाई नमस्कार, गाना सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया, दिलीप राम सियोरवा से। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए और बने रहे हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं और पवन सिंह की आवाज़ में गाने के फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं और इंजॉय करते हैं हम सभी।

रेडियो एमसी 94 एफएम पे पवन सिंह की आवाज़ में गाने सुन रहे हैं आप सब। कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। सोनम बाबू कैसे हैं, हम भी जुड़ गए हैं और सुनकर अच्छा लगा। रेडियो एमसीएम के द्वारा जीवन रक्षक जानकारी जनहित में जारी बहुत है, सराहनीय है, इसके लिए थैंक्स। एक मैडम जी का शौक था पर कल नंबर में रखेंगे क्योंकि बहुत सुल्तान नंबर में है और हम लेट हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश कल पूरी करने की कोशिश रहेगा। आप थोड़े समझते हुए कल की आपने नंबर बुकिंग कराई है, तो बिल्कुल आप बन रहे हमारे साथ फिलहाल और सुनते रहें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भैया, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है और शिव सागर जी बने रहे हमारे साथ, आप भी इंजॉय करते रहें रेडियो रमछिम। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश, एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, सर मेरा सॉन्ग प्ले हो गया है क्या? और इस मैसेज को अनीस जी पहुंचाते हैं, तो बिल्कुल अभी तो प्ले नहीं हुआ है और प्ले करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, हो जाए मोहब्बत तो फिर सूरत नहीं देखी जाती, पसंद हो जाए कोई चीज़ तो फिर कीमत नहीं देखी जाती। मुझे गाना सुनना है और गाने के फरमाइश से तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में क्योंकि बहुत सारे मैसेज पहले से भी पहुंचे हुए हैं और हाँ, जगह बनता है तो पूरा करने की भी कोशिश रहता है मेरा, ये नहीं है कि जगह रहते हुए भी आपकी फरमाइश हम रोक दें, ऐसा नहीं है। गुलाम हुसैन और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। गाने के फरमाइश करती हैं सोनी और गाने का बोल देते ही देती हैं, ओल्ड सॉन्ग है तुझे संग प्रीत लगाई सजना, और किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। तो सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे इंजॉय करते हैं हम सभी।

कभी प्यारा सॉन्ग सुनने हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे और सोशल एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई भी मैसेज पहुँचे हुए और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे से प्रीत लगाए हैं, इसके लिए आपको थैंक्स। पर हाँ, ईमानदारी से मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया कि शुक्रिया दिल से मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए सोनी, सरिया वार्ड नंबर 1 गोपालगंज से। आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा भी एक फरमाइश है और गाने की फरमाइश करते हैं। चंदन कुमार जी सीतलपुर एकमा से कहते हैं कि मैं हूँ, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। गाने का बोल देते हैं, ओ साथ ही रे तेरे बिना भी क्या जीना, हिंदी ओल्ड सॉन्ग। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

अभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छे नेट पर 4 FM पे सुन रहे थे अभी हम सभी, और साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। बिल्कुल, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय नमस्ते, आई एम बीटू शर्मा। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। पिपराई से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश करते हैं, तो आगे बन रहे हमारे साथ, समय तो काफ़ी निकल गए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मुझे सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग का बोल दिया गया है, आया सपनों में कोई शहजादा, चुरा के मेरा दिल ले गया। डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं सब, प्रियांशी पूजा कुछ प्यारे प्यारे रेडियो दोस्त, रानी रजनी संतरा कुशवाहा, सबिता चौहान, आशा चौहान, नीतू सिंह, निशा सिंह, निशा भारती, सबीना अपी, गुड़िया अपी, और शिल्पी सिस्टर इरफान भैया, कमरान भैया, हरकेश भैया, समीर भैया, गुलाम भैया, दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस गाने की फरमाइश करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे भी मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या बात है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग। बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने की फरमाइश थी, और साथ ही रे तेरे बिना भी क्या जीना। और आगे भी गाने जो प्ले करने जा रहे हैं और भी प्यारे हैं। आप लोगों की जब पुराने गाने की फरमाइश आती है तो काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो फिलहाल गाने सुनते हैं और इंजॉय करते हैं अगले गाने के साथ।

और प्यारे गाने सुन रहे थे अभी हम सभी, और सोशल एसएमएस फरमाइश। और यहाँ पे गाने के फरमाइश किया गया था, आया सपनों में कोई शहजादा चिरा के मेरा दिल ले गया। ये तो अच्छी बात है कि कोई देखा नहीं। और हाँ, आपको कैसे मालूम चल गया? और यदि चुरा के लेके चले गए हैं तो FIR करा सकती हैं, फिर वापस भी कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सुपर ब्यूटीफुल सॉन्ग चुरा के मेरा दिल ले गया गुलाम हुसैन। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गीत बड़ा ही प्यारा बा, पर क्या ये सही बात बा, तो सोच समझ के आगे बढ़ी हमरा के सुनावे खातिर। और मैसेज के करतनी लवली गुप्ता खेखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय नमस्ते, हम बीटू शर्मा। तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंच रही है, लेकिन आज फरमाइश पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि कई मैसेज पहले से भी पहुंचे हुए हैं और वो भी अपने गाने को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं श्रोतागण। तो जो भी मैसेज हमसे आज छूट जा रही है, गाने के फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे, वो कल पूरी करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सबिता चौहान की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है बरसात के दिन आए। सबसे पहले आपको और सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहती हैं, भोज छपरा से जुड़ी हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने, एंजॉय करते हैं हम सभी।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: यूं ही तुम

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is inclusive human development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
1: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the four stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
4: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Naifiu Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it as a historic moment as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. India strongly condemned the recent attack on Palau-flagged tanker MT Setebalo off the coast of Oman in which three Indian nationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the U.S. Charged Affairs. Mr. Jaiswal noted that the continuing attacks on shipping in the region are deeply worrisome and linked to the ongoing conflict. All four candidates of the National Democratic Alliance, NDA, have been elected unopposed to the Rajya Sabha from Andhra Pradesh today. The elected candidates are Vashyam Ramakrishna, Sana Satish Babu and Chintakayala Vijay of Telugu Desam Party, TDP, and Lingamaneni Ramesh of Janasena Party. Returning officer R. Vanita Rani announced their election after the completion of the nomination process and the absence of any contesting candidates. Minister of State for Chemical and Fertilizers Anupriya Patel today said that biopharmaceuticals are shaping the future of modern healthcare and India is well positioned to emerge as a global leader in the sector. Addressing the second Pharma Summit and Awards 2026 organized by ASSOCHAM in New Delhi, the minister highlighted that Biopharma Shakti Initiative envisages the launch of 100 biologics by 2047, contributing to the vision of Viksit Bharat and Swasth Bharat. Ms. Patel said the government has created strong funding and policy pathways across the pharmaceutical value chain. She further highlighted the growing importance of advanced therapies and noted that initiatives such as the PRIP scheme, National Biopharma Mission, are helping create a robust ecosystem for innovation, research and manufacturing. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to the women's single quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
5: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आज विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:13 तथा सूर्यास्त 6:47 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। तो श्रोताओं, हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:00 एक नई उम्मीद, एक नए उत्साह और नए ऊर्जा के साथ आइए शुरू करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा इस मधुर और भक्तिमय गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।